0: समस्याएं हैं तो कहीं समाधान भी होगा। अगर समस्याएं हैं कहीं तो कहीं पर समाधान भी होगा। दुखों का पहाड़ है तो कहीं ना कहीं सुकून का आसमान भी होगा। ताउम्र कोई परेशान नहीं रहता, ताउम्र कोई परेशान नहीं रहता। सही समय आने पर हर समस्या का निदान भी होगा।
1: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है। दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सिर्फ काटना ही है मकसद आपका, तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। सिर्फ काटना ही है मकसद आपका, तो कैसे भी कट जाएगी ये जिंदगी। पर हम लोग यहाँ पर जिंदगी काटने नहीं, जिंदगी जीने आए हैं। 5:45 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम भोर सुहानी। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत किशोर कुमार जी की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी

0: बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate projects worth 13,000 crore rupees in Chennai, Tamil Nadu today. Prime Minister will flag off the metro rail service of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi will also undertake a ride on the Chennai Metro from Porur bypass station to Poonamallee bypass station and back. Poonamallee-Porur corridor features a unique 3.7-kilometre double-decker structure with advanced signalling systems designed to support driverless operations. The Prime Minister will dedicate and inaugurate railway infrastructure projects worth over 750 crore rupees, including 5 Amrit stations. Pradhan Mantri Dhan Dhanya Krishi Yojana has completed 1 year today. The scheme was launched on this day last year to strengthen agriculture in 100 aspirational agricultural districts across the country. Our correspondent reports that the scheme has brought together 36 central schemes across 11 ministries and departments, along with state schemes and private sector participation, to address district-specific agricultural needs. Northern Railway has announced that all train services will operate as per their normal schedule today. Railways had decided to cancel mail and express trains scheduled to arrive at New Delhi and Hazrat Nizamuddin railway stations between 4 a.m. and 2 p.m. yesterday. Delhi Metro Rail Corporation has informed entry and exit gates of all 45 metro stations which were closed due to security reasons are now open. It added that interchange facilities at all the concerned metro stations are also available. Delhi Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in the national capital. In its advisory, the traffic police said that diversions at different stretches will be enforced starting from 6 a.m. depending upon prevailing situation. It said that movement at various stretches, including roundabouts of Shankar Road, Vande Mataram T point towards New Delhi, Jhandewala, Panchkunya Mark, Golda Khana and Patel Chowk and Mandi House, Bhairon Road, Ring Road, T Point and Lodhi Road flyover may be affected. It advised people to plan their journey in advance and avoid non-essential travel. Delhi Sikh Gurdwara Management Committee President Harmeet Singh Kalka has condemned the act of some Aam Aadmi Party leaders for playing politics over the issue of allowing the police to enter the premises of Gurdwara Bangla Sahib after the protesters entered its premises. Mr. Kalka said that the protesters forcibly entered the hall of Gurdwara with placards and shouted slogans. Mr. Kalka said that any kind of protest cannot be allowed or permitted.

0: FM Rainbow 101.9।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के CP ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान CP ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: दिन तिकी पप्पा।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: You're tuned to Akashvani Hyderabad FM Rainbow 101.9, Rainbow adds colors to your life. Coming up next is one of the famous songs with beautiful lyrics, which says whatever will be, Que Sera Sera, one of the famous songs by Doris Day. And it goes with my opening line of today that you have to seize your day and seize your life with whatever has to be, it will be, and whatever will be, it will definitely be.

0: नमस्कार। कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं निशा भारद्वाज अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स 111 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनी मन की बात में लिए गए विभिन्न विषयों में से किसी एक विषय पर केंद्रित होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त और सितम्बर माह में आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 सप्ताह के अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का उल्लेख किया है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए देश में युवाओं का नशा मुक्त होना क्यों आवश्यक है और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी समस्त जानकारी देने के लिए आज आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। नमस्कार सर, और बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद निशा जी।
0: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और यही युवा शक्ति हम

0: देश को विकसित भारत बनाने का सबसे बड़ा आधार है, लेकिन इस सुनहरे भविष्य की राह में नशा एक ऐसी दीवार है जो हमारे युवाओं की क्षमता को कमजोर करती है। तो इससे पहले कि हम आज की अपनी बातचीत का क्रम आगे बढ़ाएं, आइए पहले सुनते हैं मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय का उल्लेख कर रहे हैं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माई भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है। इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशामुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और हमारे साथ हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध नशा मुक्त भारत अभियान आज एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। इस अभियान का असली उद्देश्य क्या है? भारत के युवाओं के लिए और देश को आगे बढ़ाने यानी विकसित भारत बनाने के लिए इसका नशा मुक्त होना क्यों जरूरी है?
2: देखिए, आज अगर हम विश्व में देखें तो भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष तक की जो एक ब्रैकेट है, इसमें 37 करोड़ युवा हैं। ये युवा ही आज हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है और यदि इस युवा शक्ति को हम अपने राष्ट्र के विकास में सही तरह से उपयोग में लाते हैं तो ये हमारे लिए एसेट बनेगा। लेकिन अगर यही युवा अपने आप को ड्रग्स वगैरह के एडिक्शन में, अल्कोहल के एडिक्शन में अगर एंगेज कर लेते हैं तो इनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे राष्ट्र के विकास में होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इस स्कीम पे बहुत जोर दे रहे हैं, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। जो भी विकसित देश आज विश्व में हैं, उन्होंने अपनी युवा शक्ति को अच्छी तरह से हार्नेस किया है, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज किया है और यदि हम विकसित बनना चाहते हैं 2047 तक तो हमें भी यही करना होगा।
0: जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला प्रश्न ये है सर कि मादक द्रव्यों का सेवन एक जटिल और निरंतर बदलने वाली चुनौती है। पूरे देश में ये समस्या कितनी बड़ी है और किस तरह की नई नई प्रवृत्तियां देखने को सामने आ रही हैं, इसका पता लगाने के लिए क्या कुछ प्रणालियां अपनाई जा रही हैं?
2: देखिए, ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है एम्स दिल्ली में, तो उन्होंने एक नेशनल सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने अल्कोहल,

0: का, ड्रग्स का और जो इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं, इन सभी का उन्होंने सर्वे से पता लगाया। तो इसमें ये मालूम चला कि आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं, और इनमें से करीब 5% ऐसे हैं जो कि इस पे डिपेंडेंट हैं, जो इसके बिना कुछ कर नहीं पाते। और इसी तरह से जो गांजा है या उसके जो और पदार्थ हैं, तो उनकी संख्या भी 3 करोड़ से ज्यादा है, और जो ओपियोइड्स हम बोलते हैं उसकी संख्या करीब 2.25 करोड़ है। और जो चिंता का विषय इसके अंदर है वो ये है कि इसमें बच्चों की और एडोलेसेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब इस सर्वे के थ्रू सामने आया है। इसके अलावा समय समय पर जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी होते रहते हैं, तो इन सब से भी हमें जानकारी मिलती है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। और जो सीजर्स हो रहे हैं, जो प्रिवेंटिव मशीनरी जो हमारी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, तो ये सब भी जो है इनके सीजर्स किस तरह से हो रहे हैं, उससे भी हमें आइडिया लगता है कि ये समस्या कितनी बढ़ गई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल के मन की बात के कार्यक्रमों सहित विभिन्न अवसरों पर विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर बार बार बल दिया है। आप स्वस्थ एवं नशा मुक्त युवा आबादी और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भारत की यात्रा के बीच संबंध को किस प्रकार देखते हैं?
0: देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी जो युवा शक्ति है ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आज की तारीख में हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इन युवाओं की प्रोडक्टिविटी का हमें पॉजिटिव यूज करना है। और आज की तारीख में जैसा हम देखते हैं कि 37 करोड़ युवा हैं, जो करीब 27% हैं हमारी जनसंख्या का, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। धीरे धीरे हमारी जनसंख्या भी स्टेबलाइज हो रही है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि 2036 तक जो है ये युवा जो एक ब्रैकेट है इसके अंदर करीब 22% लोग बचेंगे। तो इन्हें हमें पॉजिटिवली यूज करना है। अगर एक युवा नशाग्रस्त होता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है, और अगर उसको उसका परिवार नशे के लिए पैसे नहीं दे पाता है या उसके स्वयं के पास वो नहीं कमा पाता है, तो वो छोटे मोटे अपराध भी करने लगता है। तो समाज को ये नुकसान होता है कि उसमें एक अपराधी उत्पन्न होता है। तो एक युवा के नशाग्रस्त होने पर युवा का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, यानी कि राष्ट्र का नुकसान होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने युवाओं को इससे दूर रखें, क्योंकि तभी हम अपने विकसित भारत का अरमान पूरा कर पाएंगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक उद्देश्य दिखाया है, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे।
1: तो ये मान सकते हैं कि लक्ष्य बहुत बड़ा है और समय बहुत ही सीमित है हमारे पास। इससे पहले कि हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर, अगला प्रश्न आपसे ये है कि इन क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा कार्य किए जाने के मद्देनजर समन्वित राष्ट्रीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उनकी संबंधित भूमिकाओं में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है?
1: देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं वो इसमें मिलकर काम करें और साथ में हम समाज को भी जोड़ें, परिवारों को भी जोड़ें। तो जहां तक सरकार की बात है, सरकार इसमें चार स्तंभों पे काम कर रही है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन। तो प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जो भी ये पदार्थ हैं इनकी उपलब्धता को कम करना, उसको रोकना, जो ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है, इस पे हमारा गृह मंत्रालय काम कर रहा है, उनकी एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरा स्तंभ जो मैंने बताया, प्रोटेक्शन, तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि इन चीजों के कितने दुष्प्रभाव हैं। इस काम में जो हमारा विभाग है, युवा कार्यक्रम विभाग जो है, वो इस दिशा में कार्य कर रहा है। और न केवल हम अवेयरनेस फैलाते हैं बल्कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माई भारत पोर्टल है हमारा, उसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं और हमारा जो NSS है, जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में और विद्यालयों में है 11वें और 12वें में, उसके द्वारा जो युवाओं की एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चैनलाइज करते हैं। बाकी के जो दो स्तंभ हैं, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन, इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट काम करती है कि अगर कोई नशे की लत में पड़ जाता है तो उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए और उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से ये तीनों जो एंटिटीज हैं सरकार की।

0: ये मिलकर इस दिशा में कार्य कर रही हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है, यानी कि इनको एक साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। जमीनी स्तर पर विशेष रूप से युवाओं, परिवारों और स्थानीय समुदायों के लिए इस दृष्टिकोण का क्या अर्थ हम समझ सकते हैं?
0: देखिए, इसमें जो पूरी, अगर मैं इसको जंग कह सकूं, इसमें हमारे उनके परिवारों का, युवाओं के परिवारों का, सभी के परिवार का और समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सबसे पहली यूनिट परिवार है जिसको ये मालूम चलेगा कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ चीज नॉर्मल नहीं है, तो वही इसको आइडेंटिफाई करके और जो भी इसकी तरफ बढ़ रहा है उसको वहीं रोक सकते हैं। अगर वो ज्यादा आगे बढ़ गया है तो उसका डी एडिक्शन होता है, रिहैबिलिटेशन होता है, उसकी तरफ उसको ले जा सकते हैं। समाज का ये योगदान रहता है कि अगर ऐसा कुछ भी इस तरह के पदार्थों की बिक्री हो रही है तो उसके बारे में समाज में किसी न किसी को तो मालूम चल ही जाता है, तो वो इसकी जो संस्थाएं हैं, जो इसकी रोकथाम की व्यवस्था करती हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन दे। इसके अलावा अगर कम्युनिटी एकजुट होकर ये कहती है कि हमारे यहाँ कोई नशा नहीं करेगा, इन सब चीजों से हम दूर रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो बहुत चीजें, उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें सीखते हैं, तो उस दृष्टि से इसमें जो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं, और इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब व्यक्ति जुड़ता है तो वो कई बार अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ता है, तो इसमें भी अगर इस विषय की चर्चा होती है, इनके दुष्प्रभाव बताए जाते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से परिवार का, समाज का, जो ये समाज सेवी संस्थाएं हैं इनका, जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनका, हम सभी का इसमें योगदान है।
1: तो सामाजिक तौर पे हम देखें तो जागरूकता और चेतना लाना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है इस दिशा में। अगला प्रश्न है, युवा कार्यक्रम विभाग ने माय भारत के माध्यम से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान को युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन के रूप में शुरू किया है। युवाओं को केवल लाभार्थी के रूप में देखने के बजाय स्वयं उन्हें अभियान के केंद्र में रखने के पीछे की क्या सोच है?
0: अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जिसको ये नशे की आदत पड़ी, तो कई बार हमें ये उत्तर मिलेगा कि ये आदत उसको क्यों पड़ी, कि वो किसी तनाव में था, उसके ऊपर कोई प्रेशर था, या जस्ट फॉर फन उसके आसपास के लोगों ने, उसके साथियों ने उससे कहा बस एक बार। ये बस एक बार जो है अनफॉर्चुनेटली बार बार बन जाता है, तो इसीलिए अगर युवा इसका लाभार्थी न होकर के खुद ही इसका संदेश वाहक होगा, तो जो ये बस एक बार की बात है, ये नशा करने के लिए नहीं कही जाएगी, ये बल्कि कोई समाज सेवा का कार्य करने के लिए कही जाएगी, किसी अच्छे काम के लिए कही जाएगी। इस दिशा से युवाओं का खुद का इसमें बहुत महत्व है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि कोई नशे में चला गया है, किसी को मालूम चला कि उसका दोस्त जो है वो नशे में चला गया है, तो उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक युवा, उसका जो मित्र है वो उसको अच्छे से दे सकता है, तो इसीलिए इस पूरी योजना का, इस पूरी कैंपेन का फोकस ये है कि युवा इसमें सहभागी बने, ना कि लाभार्थी।
1: युवा सहभागी बने और अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समाज से जब चाहे, जैसी चाहे आवश्यकता उन्हें पड़े, मदद ले सकें, इस तरीके का एक ओपननेस होनी चाहिए, उस तरीके का एक इंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए बच्चे को। तो इसी सोच के साथ हम लेते हैं यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और आज हम बात कर रहे हैं, हमारे कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान दीर्घ अवधि तक युवाओं की सहभागिता बनाए रखने का प्रयास करता है। इस विस्तारित अभियान का उद्देश्य क्या है और ये एक बार की जागरूकता गतिविधियों से आगे बढ़कर निरंतर व्यवहारगत तथा सामुदायिक स्तर पर परिवर्तन लाने की दिशा में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा पाएगा?
1: जैसा कि आपने बताया कि ये कार्यक्रम जो है

0: ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसको 100 सप्ताह का रखने का भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जो भी रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज को 21 दिन तक करते हैं तो हम उसके लिए अक्लेमेटाइज होते हैं, वो हमारे लिए एक रूटीन में आता है। अगर उसको हम 66 दिन तक करते हैं तो ये हमारी जो है ऑटोमेटिक बनने लगती है ये हैबिट। अगर हम इसको 1 साल तक करते हैं तो ये हमारी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट होता है, और अगर हम इसको 100 हफ्ते तक कर लेते हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी में लॉक हो जाता है, ये हमारे अंदर इतना डीपली इंग्रेन हो जाता है कि फिर ये हटता नहीं। तो इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को 100 हफ्ते का रखा गया है। जैसे हमारा जो NSS प्रोग्राम होता है जो कि हम कॉलेजेस और 11th और 12th में चलाते हैं, उसमें भी उसकी ड्यूरेशन भी हम लोग 2 साल रखते हैं, तो 2 साल लगभग 100 हफ्ते हो गया। तो ये इसमें जिससे कि ये उनकी एक आदत बन जाए, ये उनके जहन में उतर जाए, जिससे कि वो आगे भी कभी इस विषय में ना सोचें कि हम कोई नशा करेंगे। और इसमें एक चीज और आ जाती है कि हम केवल एक चीज पर जोर नहीं दे रहे। हमने जैसे शुरुआत हमने की थी कि हम प्लेज लेंगे, हम सभी लोग संकल्प लेंगे नशे से दूर रहने का, उससे आगे बढ़कर हम लोगों ने पूरा ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया है। तो इसमें हम परिवार को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम समाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, लाइफ स्किल्स की बात करेंगे, हम जो है स्पिरिचुअल एंगेजमेंट की बात करेंगे, फिटनेस की बात करेंगे। तो ये सभी चीजों को मिलाकर के ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया गया है।
1: तो एक तरीके से हम बात करें तो होलिस्टिक अप्रोच से आप इस चीज को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्त जो अभियान है वो हर लेवल पर, हर स्तर पर समाज में कार्य कर सके।
0: जी
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समुदाय आधारित तंत्र के रूप में नशा मुक्ति मित्र नेटवर्क विकसित कर रहा है। युवा कार्यक्रम विभाग, माय भारत, NSS और अपने युवा स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर इस पहल को किस प्रकार पूरक सहयोग प्रदान करें कि इसे सुदृढ़ता प्रदान हो सके।
0: जैसा कि मैंने बताया था कि 3 विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने एक कार्यक्रम लेके आए हैं नशा मुक्ति मित्र। तो ये नशा मुक्ति मित्र जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं जो पहले ये समझेंगे कि किस किस तरह के नशे होते हैं और इनके क्या दुष्प्रभाव हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, यदि कोई इससे प्रभावित हो चुका है तो उसको कैसे मदद की जाए, डिएडिक्शन सेंटर्स कहाँ पर है, काउंसलिंग सेंटर्स कहाँ पर है। माय भारत जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आज की तारीख में 3 करोड़ से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं। नेशनल सर्विस स्कीम जो NSS है उसमें आज हमारे पास करीब 40 लाख वॉलंटियर्स हैं। तो ये वॉलंटियर्स जो हैं ऑलरेडी कम्युनिटी सर्विस का काम कर रहे हैं और अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो इनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो नशा मुक्ति मित्र है उसमें ये लोग एनरोल करें, और ये लोग कर भी रहे हैं। 18,000 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स उसमें रजिस्टर कर चुके हैं, और इसके अलावा हमारी पहुंच जो है वो कम से कम 30,000 इंस्टीट्यूशंस तक है। तो ये पूरे नेटवर्क को भी हम उनके सपोर्ट के लिए ला रहे हैं, पर इस पूरे में हमारा प्रयास ये है कि हम जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें उनको सप्लीमेंट करें, ना कि उसको डुप्लीकेट करें।
1: तो इस तरह की सामाजिक चुनौती का समाधान जब हम देखते हैं तो अकेले सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता। इसमें गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, आध्यात्मिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत, खेल निकाय और अन्य सामुदायिक संगठन नशा मुक्त भारत आंदोलन में सार्थक भागीदार किस प्रकार बन सकते हैं?
0: आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सभी को मिलकर कार्य करना है। तो हमने जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 125 से ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो तो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस होते हैं जैसे CII है, फिक्की है, एसोचैम है, ये भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। फिर जैसा कि जो मैंने बताया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके जो एसोसिएशंस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जैसे CIPU बोलते हैं, FC बोलते हैं, AIU बोलते हैं, ये सब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हम जो कोशिश कर रहे हैं होल ऑफ प्रॉब्लम अप्रोच, जो पूरी ये समस्या है इसको जड़ से लेकर के पत्ती तक इसको खत्म करना है, तो इन सभी लोगों को हमने अपनी यात्रा में शामिल किया है और हम सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं।
1: तो जड़ से लेकर पत्ती तक इस

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज हमारे साथ जुड़े हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी और हमारे कार्यक्रम का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। युवाओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने में माता पिता, शिक्षक, युवा नेताओं और सहपाठियों की क्या भूमिका हो सकती है, क्या रोकथाम को केवल कभी कभार चलाए जाने वाले जागरूकता अभियानों तक सीमित रखने के बजाय

0: युवा विकास की दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है?
1: ये बात सही है और हमने भी हमारी सोच भी यही है कि ये एक इवेंट नहीं है और न ही ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं।

0: जिन्होंने ये उद्देश्य हमारे सामने रखा है कि यदि हमें विकसित भारत बनना है तो हमें नशा मुक्त होना होगा, तो वो खुद एक सबसे बड़े आइकॉन है हमारे देश में। इसके अलावा जो भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, हम सभी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अच्छा रसूख रखते हैं, उन सभी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। इसके अलावा जो हमारी खुद की प्रक्रिया है वो भी युवाओं में से जो उनके अच्छे आइकन्स हैं, यूथ आइकन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है। चूंकि हम यूथ पार्लियामेंट करके कार्यक्रम चलाते हैं जो कि जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके अलावा हम लोग का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग होता है जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, अगेन वो भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक आता है, और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए 10, 11 और 12 को इसको भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाता है, और 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें शामिल होते हैं, और पिछले दो कार्यक्रमों में उनने कम से कम 6-7 घंटे पूरे दिन में जो है इसको दिए हैं। तो इससे भी इन सभी सफल लोगों का उदाहरण देकर हम मोटिवेट करते हैं कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करो, नेगेटिवली नहीं।
1: जी, ऊर्जा को जो है सकारात्मकता की तरफ बहाया जाए, ना कि नकारात्मकता की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा यही है आपसे कि युवा कार्य विभाग के पास स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता का एक विशिष्ट तंत्र है। ये सकारात्मक अवसर युवाओं में विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के स्थान पर रचनात्मक विकल्प उपलब्ध कराने में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं?
0: देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो युवा है वो क्या ढूंढता है जिंदगी में, वो एक पर्पस ढूंढता है, उसको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी की खोज रहती है और वो चाहता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिले जिसमें कि वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो जो हमारे जो कार्यक्रम हैं, हम मेन वॉलंटियरिज्म पे हमारे कार्यक्रम जो हैं आधारित हैं। तो माय भारत जो है तो उसमें तो राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हमारे से जुड़ सकता है, और जैसा मैंने आपको बताया हमें खुशी है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। फिर हमारा जो NSS स्कीम है उसमें 40 लाख से ज्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्काउट्स एंड गाइड्स का भी है। तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं ये इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, उनको एक पर्पज प्रोवाइड करते हैं, बिलोंगिंगनेस का फीलिंग देते हैं और कंट्रीब्यूशन करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी एनर्जी है उसको हम पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं।
1: जी, पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हैं एनर्जी को युवाओं की, और युवाओं को मदद कर रहे हैं उनकी लाइफ का पर्पस ढूंढने में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित करने के लिए संगीत, नारों, नुक्कड़ नाटकों और डिजिटल सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। माय भारत युवाओं की रचनात्मकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किस प्रकार कर रहा है ताकि ये संदेश युवा वर्ग तक उनकी ही भाषा में पहुंचाना सरल हो सके?
0: जैसा कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त के मन की बात में ये उल्लेख किया था कि नशा मुक्त युवा हैशटैग जो है उस पर युवा जो है वो कोई स्लोगन भेज सकते हैं, कोई अपना नाटक, नुक्कड़ नाटक टाइप कर सकते हैं, या फिर कुछ निबंध भी लिख सकते हैं, या स्लोगन बनाए, जो भी गाना बनाए, फोक सॉन्ग बनाए, इसका उन्होंने आह्वान किया था। तो उसी दिशा में हम लोगों ने हमारा जो माय भारत पोर्टल है उस पर 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं जो कि 12 सितंबर से शुरू हुई। जो पहली जो प्रतियोगिता हुई है इसमें हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी स्लोगन्स और स्ट्रीट प्ले और निबंध और फोक सॉन्ग्स इसमें आए हैं, और अभी इनका इवेल्युएशन करेंगे और इनमें से अच्छे वालों को रिकग्नाइज किया जाएगा। और इस चीज़ का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से 27 सितंबर को भी किया था कि ऑलरेडी जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने जो अर्ज किया था उसको युवाओं ने बहुत अच्छे से लिया है, और नशा मुक्त युवा के हैशटैग पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं और वे जोर शोर से इसमें भाग ले रहे हैं। तो बेसिकली इस सब का उद्देश्य जो है वो ये है कि युवा जो है केवल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं के पॉजिटिव मैसेजेस अलग अलग तरीकों से बना भी रहे हैं और प्रसारित भी कर रहे हैं।
1: तो जो चैनल है वार्तालाप का वो द्विगामी है, यानी कि आप मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं, आप मैसेज भेज भी रहे हैं युवाओं की तरफ, संदेश दोनों तरफ से बरकरार है। तो ये हम अपने लिसनर्स

से अपील करना चाहेंगे इसी माध्यम से कि यदि आपके भी कोई कंटेंट है, कोई सामग्री है जो कि आपको लगता है कि इससे संबंधित है और आप उसे भेजना चाहते हैं, तो आप हैशटैग नशा मुक्त युवा पर उसको भेज सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी और हमारा आज का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। हाल की नशा मुक्त युवा गतिविधियों में स्वास्थ्य, जागरूकता और निवारक उपायों को एक साथ जोड़ा गया है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में स्वास्थ्य, फिटनेस, जीवन कौशल, स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता से जुड़े एकीकृत दृष्टिकोण को इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हुए हम देखेंगे जल्द ही?
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और पहले हमारी चर्चा भी हुई कि ये जो हमने कार्यक्रम बनाया है ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है, तो इसको हमने चार थीम्स में बांटा है, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, लीड। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स इसमें लिए जाएंगे। जैसे अभी पिछले हफ्ते जो हमने उसमें किया वो था माई हेल्थ माई प्राइड, फिट यूथ पे भी हम जाएंगे, एडिक्शन फ्री यूथ पे, लाइफ स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे देश की जो संस्कृति है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कई चीजों

0: के विषय में हम इन 100 सप्ताह में बात करेंगे और उनको इन्वॉल्व करेंगे।
1: जी सर, सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिजिटल निगरानी और संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ कर रही है। प्रौद्योगिकी और आंकड़े अभियान की पहुंच के मापन से आगे बढ़कर हम ये कैसे जान सकते हैं कि अभियान सिर्फ लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है, बल्कि इसका सच में कोई गहरा असर भी हो रहा है? इसके प्रभाव का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है?
0: ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम कुछ योजना चलाते हैं, कोई कैंपेन चलाते हैं, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, आवश्यक भी है कि उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है, जो टारगेट हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो इसके हमारे पास कई तरीके हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास जो हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है, उनके कई डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह हैं, काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह हैं। तो वहाँ पर कितने लोग सहायता के लिए पहुँच रहे हैं, तो जरूर जब हम ये कैंपेन चलाएंगे तो वो नंबर बढ़ेगा पहले, क्योंकि उनमें जागरूकता आएगी। फिर धीरे धीरे अगर ये कैंपेन प्रभावी होगी तो जो लोग ड्रग ले रहे हैं उनका नंबर भी कम होना चाहिए, तो उसमें हम वो परिवर्तन देखेंगे। दूसरा जो है, जैसा कि आप जानते हैं, जो अल्कोहल का जो ऑफ टेक है उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि उस पर किस तरह से चेंज आ रहा है। और इसी तरीके से जो सरकार का जो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो जो पिछले आंकड़े मैंने आपको बताए थे कि अल्कोहल से कितने प्रभावित हैं, ड्रग से कितने प्रभावित हैं, तो ये जो है वो फैमिली हेल्थ सर्वे से आया था। तो उस तरह के सर्वे से भी हमें जानकारी मिलेगी कि हमारी जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उनका धरातल पर कितना प्रभाव पड़ा है।
1: जी, धरातल पर प्रभाव क्या है ये जान रहे हैं। फीडबैक के माध्यम से इस सिस्टम को और अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी दिशा में हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं ये म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और आज का हमारा विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। सर, आपसे अगला प्रश्न हमारा ये होगा कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि नशा मुक्त युवा अभियान से उत्पन्न प्रगति 100 सप्ताह की अवधि के बाद भी बनी रहे और ये एक सतत युवा एवं सामुदायिक आंदोलन का रूप ले, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे इवन आफ्टर द अभियान।
1: ये बिल्कुल सही है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक इवेंट नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट नहीं है, ये ऐसा प्रयास है जिसमें हम चाहते हैं कि पूरा मानस बदल जाए, पूरी सोच बदल जाए। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कोई भी आदत को एकदम डीपली इनग्रेन होने में, उसको हमारी आइडेंटिटी में समाहित होने में 100 सप्ताह का टाइम लगता है, लेकिन लोग बदलते जाएंगे, नए युवा इसमें जुड़ते जाएंगे। तो इस कारण से ये जरूरी है कि न केवल हम इसका आकलन करें बल्कि हम किसी न किसी रूप में इसको आगे चलाते रहें। तो जो हमारे जो वॉलंटियर कार्यक्रम माय भारत है और जो NSS स्कीम है, तो उसमें हम कई थीम्स पे काम करते हैं, तो उन थीम्स में हम इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देंगे जिससे कि लगातार इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहे। और ये जो विभागों का जो कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ है, इसको भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दे दिया गया है। माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में एक कमिटी है NCOD, तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये आगे भी लगातार चलता रहेगा, काम करता रहेगा, विभाग आपस में समन्वय करते रहेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो समस्या है ये हमारे राष्ट्र में न केवल हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकें बल्कि ये वापस पनप न पाए।
0: अगर कोई परिवार या युवा अपने आसपास नशे की बिक्री देखता है या खुद मदद चाहता है तो वो सरकार से कैसे संपर्क कर सकता है? क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या पोर्टल बनाया गया है?
1: सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का एक डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है 1-4446। तो यदि कोई भी सहायता चाहता है तो वो इस नंबर को डायल करके प्राप्त कर सकता है।
0: इस अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में प्रशासनिक स्तर पर राज्यों या स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बिठाने में क्या कुछ चुनौतियां आपने देखी हैं, और मंत्रालय यदि उनका कोई समाधान कर रहा है तो उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं।
1: जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस प्रयास में हम सभी एकजुट हैं, और हम जानते हैं कि

0: भारत जो है इस मामले में थोड़ा ज्योग्राफिकली एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है, क्योंकि हमारे पश्चिम में जो है वो गोल्डन क्रेसेंट है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जहाँ की इसका प्रोडक्शन काफ़ी होता है, और इसी तरह से हमारे पूरब में जो है वो गोल्डन ट्रायंगल है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, तो उसके बीच में हम पड़ते हैं। तो जो इस तरफ के जो राज्य हैं उनमें नेचुरली इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर या पंजाब, हिमाचल इस तरफ, फिर श्रीलंका की तरफ जैसे तमिलनाडु वगैरह है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सारी राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें और खासकर ये राज्य सरकारें इसमें पूरा सहयोग केंद्र के साथ कर रही हैं और हम सब इसमें एकजुट हैं। जैसा मैंने आपको एनकॉर्ड बताया कि ये जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में है, तो इसी तरह से हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस तरह की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं, तो उसमें जो सारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं वो एड्रेस कर लिए जाते हैं। तो इसमें सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं और हम जरूर इसमें सफल होंगे।
1: भारत के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? और एक सामान्य नागरिक परिवार, शैक्षणिक संस्थान या सामुदायिक संगठन नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प में योगदान देने के लिए क्या कर सकता है?
0: जैसा हमेशा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम सभी साथ में हैं, और यदि प्रत्येक व्यक्ति खुद पे ध्यान देगा तो अपने आप जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर लेंगे। मेरा हमारे राष्ट्र के युवाओं के लिए संदेश ये रहेगा कि जो ये जीवन है ये भगवान की गिफ्ट है, ये जीवन एक जिम्मेदारी भी है और एक जरिया भी, ये विरासत भी है और नजरिया भी, इसे व्यर्थ न जाने दें, इसे जिएं, स्वयं को जानें, इसकी कमान खुद संभालें और खुद को उपहार दें उस जीवन का जिसे आप जीना चाहते हैं, जिसके आप योग्य हैं। अगर इंग्लिश में बहुत शॉर्ट में कहूंगा, लीड योरसेल्फ टू द लाइफ यू डिजर्व। बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: श्री सुनील पालीवाल सर, आज आपने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को जो संदेश दिया है और जिस तरह सरकार के प्रयासों व योजनाओं के बारे में आपने बताया है, वो वाकई प्रेरणादायक है। युवाओं को खेल, कला और सकारात्मक कार्यों से जोड़कर ही हम नशे के इस जाल को तोड़ सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ने और अपने विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी।
1: इसी के साथ कार्यक्रम के संयोजक प्रमोद कुमार वत्स और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूं आपसे अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
3: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा

0: 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने 1 वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रूपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी 1-1 नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

का मेल वर्जन जो है वो किशोर कुमार ने गाया था, बट इस गाने से पहले कुछ समय तक किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच में अनबन हो गई थी, और उसके बाद बप्पी लहरी के इंटरवेंशन से उन्होंने वापस कमबैक किया, मतलब ये जोड़ी ने वापस कमबैक किया फ्रॉम दिस अ मूवी. ना 1981 में किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज में गाना गाना बंद कर दिया था. इसकी वजह ये थी कि किशोर कुमार ने अपनी खुद की एक फिल्म ममता की छांव में बनाई थी, और उन्होंने अमिताभ बच्चन से इसमें एक गेस्ट अपीयरेंस करने का अनुरोध किया था. जब अमिताभ बच्चन ने इसमें काम करने से मना कर दिया था तो किशोर कुमार थोड़े से नाराज हो गए. उन्होंने उसके बाद नसीब, कूली और मर्द जैसे फिल्मों में अमिताभ के लिए प्लेबैक देने से मना कर दिया था. किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन के बीच की ये नाराजगी लेकिन लंबे समय तक नहीं चली, बिकॉज बप्पी लहरे जी, या यस फ्रेंड्स, संगीतकार बप्पी लहरे जी, उनके विशेष अनुरोध पर किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के लिए सुपरहिट फिल्म शराबी 1984 और रफ्तार 1985 के लिए दोबारा अपनी आवाज दी, और उनकी जुगलबंदी फिर से लौट आई. शराबी फिल्म के गानों ने तो इतिहास रचा दिया था. तो इस बात पर एक और प्यारा सा गाना

0: సెబి వారి ఇన్వెస్టర్ అవగాహన కార్యక్రమం. మరింత సమాచారం కోసం సెబి ఇన్వెస్టర్ వెబ్సైట్ ను సందర్శించండి లేదా సెబి సారథి యాప్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम 101.9 रेनबो के साथ लाइव रंगीन. दोस्तों, अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार की जोड़ी हिंदी सिनेमा की सबसे ऐतिहासिक और बेहतरीन जोड़ियों में से एक है. दोनों से जुड़े कई रोचक और यादगार किस्से भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. और क्योंकि आज श्री अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है तो मैंने सोचा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के वो सारे सुपरहिट गाने आपके लिए आज लेकर आऊं.

के साथ लाइफ रंगीन। दोस्तों अभी कुछ ही देर पहले आपने डॉन मूवी का वो फेमस गाना, वो खाई के पान बनारस वाला, वो सुना था। उसके पीछे भी एक काफी मशहूर किस्सा है। फिल्म डॉन, जो कि 1978 का सुपरहिट मूवी था, और उसका ये सुपरहिट गाना खाई के पान

0: गलती हुई, उन्होंने इसे गाने से साफ मना कर दिया था। बाद में ये गाना किशोर दा की जगह शैलेंद्र सिंह या मनहर उदास की ओर बढ़ा, लेकिन श्री अमिताभ बच्चन जी इतने कन्विंस थे कि ये गाना किशोर कुमार की आवाज पर ही सूट होगा, उन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट किया एंड उसके बाद किशोर कुमार ने गाना गाया और उसके बाद तो इतिहास गवाह है कि ये गाना कितना सुपर हिट है। बट उन्होंने इस गाने के लिए कैसे माना ये किस्सा भी बहुत ही मजेदार है। सुनते रहेगा आगे इन दोनों के बीच के किस्से और दोनों के सुपरहिट गाने। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई,
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
1: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
2: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
1: It's not just food.
2: It's culture, history and flavor rolled into one.
3: Jashn-e Hyderabad.

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। तो दोस्तों, आज श्री अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के अवसर पर उनके और किशोर कुमार के फेमस सुपरहिट गानों का सिलसिला जारी है, और साथ ही मैं आप लोगों को उनसे जुड़ी, इन दोनों से जुड़ी किस्से भी बता रही हूं। तो एक और किस्सा बहुत ही फेमस है, ये उन दिनों की बात है जब अमिताभ बच्चन जी ने कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत के दिनों की बात है। तो एक बार कौन बनेगा करोड़पति के सेट से ही अमिताभ जी ने किशोर कुमार को फोन किया, एंड उनके ट्रेडमार्क स्टाइल में, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। तो मतलब जैसे उन्होंने फोन कॉल उठाया तो अमिताभ बच्चन ने इस तरह से, इस अंदाज में अपने आप को इंट्रोड्यूस ही किया था, लेकिन वहां पर किशोर कुमार ने अमिताभ बच्चन के जो स्टार्टिंग, मैं अमित अमिताभ, वो वाला उतना सा ही सुनकर किशोर कुमार जी ने सोच लिया था कि ये उनके बेटे अमित कुमार जी है फोन पर। तो ये किस्सा भी बहुत ही फेमस है। अमिताभ बच्चन जी जब भी मौका मिलता है किशोर कुमार से जुड़ी हुई कोई भी किस्सों का, तो ये वाला किस्सा कभी नहीं भूलते हैं।
1: ఎల్ఐసి వారి టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ జీవన రక్ష మీ సంతోషాలను సురక్షితంగా ఉంచుకోండి. మహిళలకు ప్రత్యేకమైన ప్రీమియం రేట్లు, బీమా రక్షణతో పాటు మరెన్నో సదుపాయాలు. మీ ప్రియమైన వారి భవిష్యత్తుకు భద్రత కల్పించండి, వారి సంతోషాలను వికసించనివ్వండి. ఎల్ఐసి ప్రతి క్షణం మీకు తోడుగా.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम 101.9 रेनबो के साथ लाइव रंगीन। दोस्तों आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज माँ शैलपुत्री या एक अवतार माता का पहले दिन का अवतार द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉडेस दुर्गा वो आज मनाया जाता है। माँ शैलपुत्री यानी कि हिमालय की बेटी, डॉटर ऑफ द हिमालयाज। इट सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ, प्यूरिटी एंड न्यू बिगिनिंग्स। और आज का कलर है वाइट। वाइट यानी कि पीस, सेरेनिटी, क्लैरिटी, प्यूरिटी। तो आज नॉर्थ में इस तरह से द रिचुअल इज सेलिब्रेटेड वेर अ सीक्रेट बॉड इज सेट अप विथ वाटर, मैंगो लीव्स, अ कोकोनट एंड उसमें बार्ले सीड्स को इन्वोक करते टू इन्वोक डिवाइन एनर्जी। आज की पूजा काउघी, फ्रेश फ्लावर्स, अगरबत्ती और ट्रेडिशनल सीड्स के साथ मनाया जाता है। तो आज है पहला दिन नवरात्रि का और जैसे मैंने कहा नवरात्रि यानी कि खुशियों का त्योहार, भक्तिपूर्ण त्योहार। और बस एक ही तमन्ना, एक ही आशा, एक ही प्रार्थना सबके मन में कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, सब स्वस्थ रहे और किसी के बीच कोई कलेश ना रहे, बस सब मिलजुल कर जैसे डांडिया में रास किया जाता है, सब मिलजुल कर खेलते हैं, उसी तरह से जिंदगी सबकी

माचिस मूवी का सुरेश वाडकर के आवाज में गाया हुआ ये गाना आप सबने सुना आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। अच्छा दोस्तों, वैसे ये गाना मैंने इसलिए भी बजाया क्योंकि आज चंद्रचूड़ सिंह का भी जन्मदिन है। जी हाँ दोस्तों, वही जो इस गाने से और इस मूवी से बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके थे। तो मैं बात कर रही थी जयप्रकाश जी के बारे में, लोकनायक के बारे में, और मुझे याद आता है उन सभी लोगों का जिन्होंने अपना देश, अपना सर्वत्र त्याग किया हमारी आजादी के लिए। बट क्या हम उस आजादी को या उस फ्रीडम को जो इतने मुश्किलों के बाद हमें मिला, उसका वैल्यू हम कर रहे हैं? क्या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उस फ्रीडम को बरकरार रखें? क्या हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उन सभी सैक्रिफाइसेस का मान रखें? इसके बारे में और बात करेंगे, स्पेशली ऑन द लाइन्स ऑफ हैविंग ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दैट नेशन दैट वी एंड टुवर्ड्स दैट फ्रीडम दैट वी अचीव्ड आफ्टर अ लॉन्ग बैटल एंड आफ्टर अ लॉन्ग सैक्रिफिशियल लाइन। है ना दोस्तों, सोचने वाली बात जरूर है ना कि इतनी मुश्किलों के बाद, इतने साल बीइंग अ स्लेव्स अंडर द ब्रिटिश, एंड क्या कुछ नहीं सहा, एंड उसके बाद पूरा भारत एक होकर, एकजुट होकर अंग्रेजों को भगाकर, इतनी मुसीबतों के बाद जो आजादी हम सब ने हासिल किया, आर वी ट्रूली ग्रेटफुल फॉर द फ्रीडम दैट वी हैव? इसके बारे में जरूर बात करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।

VR, मतलब ग्रेटिट्यूड की परिभाषा आजकल इस जनरेशन के लोगों के लिए बहुत ही अलग है. ईच पर्सन टू हिज ओन एज इज सेड, बट देन आमतौर पर ये जो परिभाषा है, ओवरऑल इफ यू सी, इट्स जस्ट टू सेटिस्फाई अदर्स. मतलब

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 रेनबो के साथ लाइफ रंगीन। स्टूडियो क्लॉक में हो चुका है 1:55 और हमारी अगली आरजे जश्न हैदराबाद को प्रस्तुत करने के लिए आरजे अनुषा बहुत ही जोश और होश से आप सभी के सामने आने के लिए बेकरार होकर वेट कर रही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी उसको सुनने के लिए वेट कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा आप दोनों के बीच नहीं आऊंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरा आप सबसे विदा लेने का टाइम आ चुका है। तो जैसे कहावत है, हर कोई चीज जो शुरू होती है उसका अंत होना भी जरूरी है। तो आज का मेरा ये सफर यहीं तक था, आप सबसे मेरा विदा लेने का टाइम आ चुका है। अगली बार एक और शो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से कभी पीछा मत छोड़िएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सेल्फ, योर फैमिली एंड ऑल्सो टुवर्ड्स योर नेशन। सो टेक केयर, बाय बाय।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: FM रेनबो 101.9।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने डब्ल्यू

0: www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: FM Rainbow 101.9

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: हर सोमवार सुबह 11 बजे सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।
2: FM रेनबो 101.9।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है। इस वक्त स्टूडियोज की घड़ी में रात के 9:30 और 15 सेकंड्स हो रहे हैं। अब वक्त हुआ जाता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का। समय इनके खिदमत में सना अलमास बावजीर का पुरखलूस आदाब। पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

कागज पर सुनिएगा, हर्फे ताबिंदा। इसके बाद आप सुन सकते हैं भुलाई नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत। और साथ ही आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड।

और फिर सुरीले गीतों के सफर में बातें होंगी मेगा स्टार श्री अमिताभ बच्चन की। नैरंग बज्म के इख्तिताम पर आप सुनेंगे पयामे शब जिसको पेश करेंगे सैयद नदीम अख्तर जेदी। और रात 11 बजे उर्दू प्रोग्राम नैरंग का इख्तिताम होगा।

0: तो आइए दोस्तों, बज्म का आगाज करते हैं हर्फे ताबिंदा से।
1: मौजी सामाइन, आज मैं एक ऐसे लफ्ज पर बात करना चाहती हूँ जो सुनने में तो बहुत सादा है, लेकिन इसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं, और वो लफ्ज है वफादारी। आज के दौर में जहाँ हर चीज की कीमत लगाई जाती है, लेकिन वफादारी वो वाहिद दौलत है जो खरीदी नहीं जा सकती बल्कि कमाई जाती है। दोस्ती हो या खानदानी ताल्लुकात, वफादारी के बगैर कोई भी रिश्ता देर पा नहीं हो सकता। अगर मुआशरे के अफराद एक दूसरे के साथ वफादार हो तो धोखा दही और बेयकीनी का खात्मा होता है। कहा जाता है कि वफादारी की पहचान खुशहाली में नहीं बल्कि आजमाइश के वक्त होती है। मुखलिस लोग वही होते हैं जो हालात बदलने के बावजूद अपना मौकफ या साथ नहीं बदलते। आज के दौर में जहां मफाद परस्ती आम है, वहां एक वफादार इंसान किसी कीमती खजाने से कम नहीं होता। अगर आप अपने उसूलों और ज़मीर के साथ मुखलिस नहीं हैं, तो आप किसी और के साथ वफादार नहीं हो सकते। याद रखिए, वफादारी सस्ते लोगों के बस की बात नहीं है, ये एक महंगा तोहफा है। इसकी तवक्के कभी कमज़र्फ लोगों से ना रखे। सच्ची वफादारी सिर्फ शोर मचाने या दावा करने का नाम नहीं है। असल वफादार वो है जो आपकी गैर मौजूदगी में आपकी इज्जत का पहरा दे। अगर कोई शख्स आपके पीछे आपकी बुराई सुनकर खामोश रहता है तो वो वफादार नहीं। वफादारी का तकाजा है कि पीठ पीछे भी वैसा ही रहा जाए जैसे सामने। कहा जाता है कि वक्त एक ऐसी छलनी है जो मुखलिस और मतलब परस्त लोगों को अलग कर देती है। खुशहाली में तो साए भी साथ चलते हैं, लेकिन वफादार वो है जो अंधेरों में चिराग बनकर साथ खड़ा हो। आज के कॉरपोरेट दौर में वफादारी का मतलब सिर्फ एक ही जगह काम करना नहीं, बल्कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां अपनी पूरी सलाहियतों और ईमानदारी से काम करना है। वफादारी का मतलब ये हरगिज नहीं कि अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो आप उसका साथ दें। अगर आपका दोस्त या इदारा गलत रास्ते पर है तो वहाँ वफादारी का तकाजा खामोशी नहीं बल्कि इसलाह है। गलत काम में साथ देना वफादारी नहीं बल्कि जुर्म में शराकत दारी है। आजकल बहुत से लोग वफादारी का नाटक सिर्फ उस वक्त तक करते हैं जब तक उनका मफाद वाबस्ता होता है। जैसे ही फायदा खत्म होता है उनकी वफादारी भी खत्म हो जाती है। आखिर में मैं ये कहूंगी कि वफादारी जरूर निभाएं, लेकिन उसे अंधी तकलीद ना बनने दे। सच्ची वफादारी वो है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। जहां आपकी खुददारी और सच्चाई खतरे में हो, वहां वफादारी के मायने बदल जाते हैं। इसीलिए बाकिरदार बने, वफादार बने। किसी ने क्या खूब कहा, वफा तुमसे करेंगे और बेहद बेहिसाब करेंगे। वफा तुमसे करेंगे और बेहद बेहिसाब करेंगे, हम अपने हर अमल से अब मोहब्बत का निसाब करेंगे।
0: जी हाँ दोस्तों, फहमिदा फहमोश की आवाज में अभी आपने सुना हर्फे ताबिंदा। आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम नए रंग आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। हाँ जी बिल्कुल, हम आपसे ढेरों सारी बातें करेंगे और आगे हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के मुतालिक। लेकिन उससे पहले सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत सा फिल्म आपकी कसम से लिया गया ये गीत। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने और आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि नवरात्रि का एक इंतहाई अहम और मकबूल त्यौहार है। नवरात्रि एक इंतहाई अहम और मकबूल त्यौहार है जो 9 रातों और 10 दिनों तक मनाया जाता है। जी हाँ बिल्कुल, नवरात्रि दो लफ्जों का मजमुआ है। नौ यानी कि 9 और रात्रि का मतलब होता है रात। ये त्यौहार साल में दो बार बड़े जोश व खरोश से मनाया जाता है। एक निस्बतन नवरात्रि बाहर के मौसम में और दूसरा शारदीय नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर के

महीने में। इस दौरान ताकत और तवन्नाई की अलामत देवी के 9 मुख्तलिफ रूपों की पूजा की जाती है, यानी कि दुर्गा पूजा की जाती है।

जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की फतेह है। ये त्यौहार इस अकीदत से जुड़ा है कि देवी दुर्गा ने बुरे राक्षस का खात्मा किया था। दसवें दिन को विजयदशमी या दशहरा कहा जाता है, जो हक की बातिल पर फतेह की याद दिलवाता है। बिल्कुल, इन 9 दिनों में अकीदतमंद रोजे रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिन ताकत, अगले 3 दिन दौलत और आखिरी 3 दिन इल्म वो हिकमत की देवी सरस्वती के नाम होती है।

रेनबो 101.9 आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, नित नए रंगों से सजा अर्थ प्रोग्राम नए रंग। यस, आपकी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और इस गीतों के सफर में बातें होंगी अनेक। हाँ जी बिल्कुल, और सुरीले गीतों का सफर शुरू करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। अंतराल के उस पार बातें होंगी, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड।

हाँ जी, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं मनचले नटखट गीत और ढेरों सारी बातें लेकर, है ना। और मुझे बहुत ही खूबसूरत सी वो पंखुड़ियाँ याद आ रही है, और आप हमें बताएं कि क्या आप भी इन पंखुड़ियों से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। तो वो पंखुड़ियाँ भाई साहब कुछ इस तरह से हैं कि ये जो जिंदगी की किताब है, हाँ जी बिल्कुल, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन ख्वाब है तो कहीं जानलेवा अजाब है। हाँ बिल्कुल ये सही है कि कभी खो लिया कभी पा लिया, कभी रो लिया तो कभी गा लिया, है ना। कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं रहमतों की है बारिशें, कहीं तशंगी बेहिसाब है, कहीं तशंगी बेहिसाब है, कहीं छाँव है कहीं धूप है, कहीं छाँव है तो कहीं धूप है, कहीं और ही कोई रूप है, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं छीन लेती है हर खुशी, कहीं मेहरबान बेहिसाब है, कहीं मेहरबान बेहिसाब है। ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन ख्वाब है, कहीं एक हसीन ख्वाब है तो कहीं जानलेवा अजाब है।

101.9 आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हां दोस्तों, तो आइए अब हम बात करते हैं बैनुल अक्वामी यौम तफला, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, जो कि हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका मकसद लड़कियों के हुकूक और इनको दरपेश चैलेंजेस और माशरे में इनको बाइख्तियार हैसियत उजागर करना है, बाइख्तियार बनाना है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैनुल अक्वामी यौम तफला, यानी कि आज की बेटी रोशन मुस्तकबिल की। जी हाँ बिल्कुल, खुदावंद आलम ने कायनात में औरत को तकलीक का सरचश्मा और रहमत बनाया है। एक माशरा इस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक इसकी नस्व आबादी को मसावी हुकूक और एहतराम। बैनुल अक्वामी यौम तफला हमें ये याद दिलाता है कि एक बच्ची को जब तहफ़ मयारी तालीम और बेहतरीन खुराक और मुनासिब मौाक़े मिलते हैं तो पूरा माशरा मजबूत हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल,

आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्म गीत, और साथ ही आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड पर। और स्टूडियोज की घड़ी में इस वक्त वक्त हुआ चला है 10:30 और 17 सेकेंड्स। जी हाँ दोस्तों, दिन की अहमियत और पस मंजर के मुताबिक अगर हम बात करें तो अक्वामे मुत्तहिदा ने 11 अक्टूबर को बाज़ब्ता तौर पर इस दिन के तौर पर चुना है ताकि दुनिया भर में लड़कियों को दरपेश इम्तियाज, कम उम्र की शादियों और तालीमी पसमंदगी जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सके। जी हाँ बिल्कुल, और ये दिन इस बात का इरादा करता है कि बेटियां किसी भी माशरे का कमजोर हिस्सा नहीं, बल्कि इनके पास तरक्की की वो सलाहियत है जो दुनिया का नक्शा बदल सकती है।

101.9 आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं अर्थ प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बाबाजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको सुनवा रहे हैं भुलाए नहीं भूलते सिलसिले के तहत चंद हिंदी फिल्मी गीत, और साथ ही हम बात कर रहे हैं बैनुल अक्वामी यौम तफला के मुतालिक। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों की तालीम, तालीम का हक, सेहत और तहफ़ और मसावात, अगर इस हवाले से हम बात करें तो आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो आप एक फ़र्द को पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप पूरे ख़ानदान को पढ़ाते हैं। बच्चों की तालीम माशी और समाजी तरक्की की बुनियाद है।

बच्चों को सेहत की बुनियादी सहूलियात और एक महफूज माहौल फराहम करना वालिदैन और रियासत की अवलीन जिम्मेदारी है, और हुकूक निस्वा बेटियों का एहतराम इस्लामी तालीमात का बुनियादी हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, बेटियां घर का उजाला और कौम का मुस्तकबिल होती है। बैनुल अक्वामी योम तफला, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड मनाने का असल मकसद तब पूरा होगा जब हम महज एक दिन की तकरीबात तक महदूद ना रहें, बल्कि अमली तौर पर अपनी बच्चियों को बाएख्तियार बनाएं, इनके ख्वाबों की कदर करें और इन्हें एक ऐसा महफूज माशरा फराहम करें जहां वो बगैर किसी खौफ के अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें।

0: 101.9 आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, आपकी अपनी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर के संग। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड की। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेत्री की, एक ऐसे अदाकार की। आप समझ ही गए होंगे, हम बात करने जा रहे हैं एंग्री मैन की। जी हाँ, बॉलीवुड के मारूफ तरीन और बाअसर तरीन अदाकाराओं में से एक है जिन्हें शहंशाह और बिग बी भी कहा जाता है।
1: I can talk English, I can walk English, I can laugh English. Because English is a very funny language. Bhairo becomes Byron and Byron becomes Bhairo because they are...

0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेगा स्टार श्री अमिताभ बच्चन की, जो कि 11 अक्टूबर सन 1942 को अलाहाबाद, मौजूदा प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। इनका पैदायशी नाम इनकलाब श्रीवास्तव था, जो तहरीके आज़ादी हिंद के नारे इनकलाब जिंदाबाद से मुतासिर होकर रखा गया, जिसे बाद में बदलकर अमिताभ बच्चन कर दिया गया। इनके वालिद हरीश राय
1: मैं
0: बच्चन
1: और मेरी
0: हिंदी
1: तन्हाई
0: के मायानाज शायर थे,
1: अक्सर
0: जबकि
1: ही
0: वालिदा
1: बातें
0: का
1: करते
0: नाम
1: हैं,
0: नीची बच्चन था।
1: तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इन्होंने सन 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने अदाकारी के सफर का आगाज किया। सन 1970 की दिहाई में शोले, एंग्री मैन और फिर इन्हें कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। फिल्मी अदाकारी के अलावा इन्होंने मकबूल टेलीविजन शो की कौन बनेगा करोड़पति में मेजबानी भी की।

जी हाँ दोस्तों, सुरीले गीतों के सफर में हम बात कर रहे हैं मेगा स्टार श्री अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर सन 1942 को अलाहाबाद प्रयागराज में पैदा हुए। जी हाँ दोस्तों, फन के एतराफ में इन्हें हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री, सन 1944 पद्म भूषण, साल 2001 पद्मा विभूषण, साल 2015 और फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े एजाजात दादा साहब फाल्के अवार्ड साल 2018 में नवाजा गया।

सुरीले गीतों का सफर होता है यहीं पर अब खत्म। आइए अब सुनते हैं पयामे शब। तहरीर और पेशकश होगी सैयद नदीम अख्तर जेदी की।

0: अभी जिंदा है मां मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूं दुआ भी साथ चलती है। ये शेर मां की दुआ की कुव्वत, मोहब्बत और औलाद के लिए उसकी बेलौस फिक्र को बयान करता है। इससे यह नसीहत मिलती है कि मां की मौजूदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसीलिए उसकी कदर करनी चाहिए और उसकी दुआओं को अपनी जिंदगी का सरमाया समझना चाहिए। माँ की दुआ इंसान के लिए हौसले और उम्मीद का जरिया है, मगर इस नेमत की कदर सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि माँ की खिदमत, इज्जत और फरमाबरदारी से होनी चाहिए। जब तक माँ साथ है उसके कदमों में बैठकर दुआएं लीजिए, क्योंकि दुनिया की बहुत सी नेमतें दोबारा मिल सकती हैं मगर माँ का साया दोबारा नहीं मिलता।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आज का अर्थ प्रोग्राम नए रंग इख्तिताम को पहुंचता है। इस वादे के साथ दोबारा जल्द होगी आपसे मुलाकात इन मीटर्स पर। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त सना अलमास बावजीर को दीजिए इजाजत।

0: लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक की यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से

0: Good evening, listeners. Welcome to Market Mantra. Today being Sunday, we'll be taking your calls on mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. To call us, you can connect on the numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do prefix the code 011. Along with Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे ख्याल रखें हम किसी खास म्यूचुअल फंड से संबंधित सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आकार रस्तोगी आकार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है
2: जी धन्यवाद
1: पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर
0: In domestic bullion market, gold and silver prices end on mixed note last week. Foreign portfolio investors sell equities worth over 45,000 crore rupees on stock exchanges, infuse more than 900 crore rupees through primary market in October so far. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings and geopolitical developments for Qs next week.
1: देश के सर्राफा बाजार में पिछले हफ्ते सोने और चांदी में मिला जुला रुख अक्टूबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने स्टॉक एक्सचेंज में 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे प्राथमिक बाजार में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा आर्थिक आंकड़ों कंपनियों की आमदनी और वैश्विक घटनाओं पर
0: And before we begin with the program, here is a disclaimer. Once again, want to remind our listeners that we do not address any specific fund-related queries. And besides that, the views given by the experts are of their own and not those of Akashvani. Akashvani does not endorse any of the views expressed by the experts present here.
1: और खबरों का सिलसिला शुरू करें हम पिछले हफ्ते भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला रुख बना रहा एमसीएक्स में दिसंबर अनुबंध का सोना वायदा पिछले हफ्ते 0.7% बढ़कर 151,499 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ दिसंबर

0: पर अनुबंध की चांदी मामूली गिरावट के साथ 2,25,755 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। कॉमेक्स में दिसंबर अनुबंध का सोना 1.3% बढ़कर 4,216 डॉलर 30 सेंट प्रति ट्रॉय आउंस पर रहा। दिसंबर अनुबंध की चांदी 1% बढ़कर 61 डॉलर 5 सेंट प्रति ट्रॉय आउंस पर आ गई। और हम अभी सोने और चांदी में तो उतार चढ़ाव देख ही रहे हैं, शेयर बाजार का हाल भी हम देख रहे हैं आकर कि कैसा चल रहा है, और अंदाज़ा लगाना तो वैसे भी मुश्किल है, लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन हालात में अभी जो क्योंकि हमारे बहुत सारे निवेशक, बहुत सारे कॉलर्स जो आते हैं, बहुत छोटी जगहों से आते हैं और छोटी रकम से शुरुआत कर रहे होते हैं, अभी म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में कदम रख रहे होते हैं, ऐसे लोग इन हालात में क्या करें? अभी जब काफ़ी हमें दिखता है कि काफ़ी ऊपर हो रहा है या नीचे जा रहा है, ऐसी स्थिति में वो काफ़ी डर जाते हैं कई बार।
1: जी बिल्कुल, जब भी आपका एक हार्ड अर्न्ड मनी लगा होता है और मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ जब आप उसकी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को नीचे जाते हुए देखते हैं तो डरना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन इस वक्त बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है कि जो निवेशक है वो घबराए नहीं, वो पैनिक ना हो, और साथ ही में ध्यान रखे असेट एलोकेशन का अपना। उनको अपना जो उनका इन्वेस्टमेंट प्लान है उस पर डटे रहना है, और उनको ये चीज़ एकदम ध्यान में रखनी है कि भले ही अगर मार्केट अभी बीच में नीचे जा रही है, वोलेटिलिटी आ रही है, तो ये जो सारी फ्लक्चुएशंस है ये शॉर्ट टर्म में होती है। इक्विटी में पैसा हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जाता है, 5 साल या उससे ज़्यादा सालों के लिए, और आमतौर पर देखा गया कि जितना ज़्यादा सालों तक आप अपना पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं तो वहाँ पे इन फ्लक्चुएशंस का जो असर है, जो वोलेटिलिटी का असर है, वो बहुत ही मामूली सा रह जाता है और आपको एक अच्छा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलता है एक नॉर्मल किसी भी और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से। तो निवेशकों को इस वक्त जो करना चाहिए वो सबसे पहले तो है कि घबराए नहीं, डरे नहीं, और साथ में ये अच्छे से कंफर्म कर ले कि जो उनका पैसा इक्विटीज में निवेशित है, जो इन्वेस्ट करा हुआ है, वो उनका लॉन्ग टर्म मनी है जो उनको 5 साल तक नहीं चाहिए होगा। साथ ही में अपने असेट एलोकेशन का ध्यान रखें।
0: और जैसे आपने ये बताया कि चलिए बाजार में बने रहे, निवेशित रहे हम, तो जो पैसा हमने अभी इससे पहले लगा दिया है वो तो चलिए लगा रहने देंगे हम।
1: हाँ जी,
0: क्या इस समय हमें नया निवेश अपना जारी रखना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, निवेश जारी रखिए, बट वहाँ पे कभी हल्का सा भी इस हिसाब से निवेश ना करिए कि हाँ अभी मार्केट नीचे है और ऊपर जल्दी जाएगा और मैं जल्दी कुछ पैसे कमा लूँगा। लॉन्ग टर्म का जो आपका पैसा है, जो आपको 5 साल के बाद चाहिए, उसको ज़रूर निवेश करें। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा समय है अपना नया पैसा निवेश करने के लिए, क्योंकि इस वक्त मार्केट जब नीचे जाता है तो आप सस्ते में खरीदते हैं।
2: So Akar, I've also been listening to you very carefully, and you know, risk, discipline, long-term wealth creation, there's lots that comes in the kitty of investment through mutual funds. We'll come back to this discussion. First, let's hear what our first caller has to ask from us. Keshav ji, swagat hai aapka, sawal poochhe.
3: Ji, namaskar, main ye puchna chahta hu sir se ki jaise ki hum mutual fund mein jankari nahi rakh pate, to hum bank ke khatiyon mein hi invest karte, तो ऐसा कोई तरीका है जो म्यूचुअल फंड में भी जा सके, और एक साल के लिए अगर हम म्यूचुअल फंड में जाना चाहें तो किस ढंग से जा सकेंगे? 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें एक साथ। तो दूसरा सवाल ये भी है कि अगर हम गोल्ड खरीदते हैं और उसको खरीदने में तो आसानी होती है, गोल्ड को आसानी से सेल भी हो सकता है, होता है जो शॉप होती है वो आसानी से ले लेती है, ये कन्फ्यूज।
1: किशोर जी, जो आपका पहला सवाल था कि म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए, देखिए म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं और अलग अलग समय के अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से स्कीम्स उसमें बनी हुई है। उसमें कहीं अराउंड 1500 ओपन एंड स्कीम्स है जो बनी हुई है। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है कि जो आपकी ज़रूरत है, जो आपका एक गोल का होराइजन है, जितने समय के लिए आप पैसों का निवेश करना चाहते हो और जो आपका रिस्क एपेटाइट है, आप उसके हिसाब से सही तरीके का म्यूचुअल फंड चुने। आपने बीच में मेंशन किया कि आप एक साल के लिए पैसे निवेश करना चाहते हैं, एक साल के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में बिल्कुल निवेश नहीं कीजिएगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में कम से कम आपका होराइजन 5 साल का होना चाहिए,

0: एक साल के लिए मेरी समझ में एक लिक्विड फंड सही रहेगा। लिक्विड फंड एक तरीके का डेट फंड होता है जिसमें जो आपका पैसा है वो ज़्यादातर ऐसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में या ट्रेजरी बॉन्ड्स में लगाया जाता है जिनकी मच्योरिटी केवल 91 डेज़ के अंदर होती है। इसमें आपको एक एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा रुपया भी मिलेगा और इसमें वोलेटिलिटी भी कम रहेगी। और साथ ही में जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है डेट म्यूचुअल फंड के साथ, यहाँ पे आपको कोई एक समय पक्का नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसे कुछ भी ऐसा है कि आप एकदम श्योर नहीं है कि आपको जो टेन्योर है, जैसे एफडी में आपको टेन्योर एकदम गारंटीड तरीके से बताना पड़ता है कि 1 साल, 6 महीने, 15 महीने, और अगर आप उस तय किए समय से पहले बाहर पैसा निकालते हैं तो फिर वहाँ पर आपको पेनल्टी भी लग जाती है। वही चीज़ आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं होगी, आप कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपको एक गारंटेड रिटर्न चाहिए और आप समय के साथ एकदम पक्के हैं कि नहीं आपको 1 साल के बाद ही चाहिए, तो आप फिक्स डिपॉजिट का भी चुनाव कर सकते हैं। दूसरा सवाल था आपको गोल्ड को लेकर के। देखिए, गोल्ड में निवेश करना चाहिए और पोर्टफोलियो का कहीं हद तक इसको 10 से 15% आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा निवेश नहीं करिएगा। और मेरी समझ में गोल्ड में निवेश करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए जाइए। फिजिकल गोल्ड में निवेश करने में जो दो तीन दिक्कतें रहती है वो ये रहती है कि सबसे पहले तो आपको उसको सिक्योरली रखने में दिक्कत रहेगी, एक सेफ लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप घर में रखते हैं तो एक वैसी चिंता रहेगी कि कभी कोई बाहर से आया है, कभी घर में काम हो रहा है तो कहीं इधर उधर ना हो जाए। और बैंक में रखेंगे, लॉकर की सहायता लेंगे तो वहाँ पे एक आपको अलग एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी। वहीं पे अगर आप इसको गोल्ड को ज्वेलरी के फॉर्म में लेते हैं, फिजिकल फॉर्म में, तो जब भी आप कभी इसको बेचने जाएंगे तो जो ज्वेलर है वो खरीद तो लेगा लेकिन वहाँ पे मेकिंग चार्जेस के नाम पे बहुत सारे कुछ चीज़ें होती है, मेकिंग चार्जेस और दूसरे कहीं पे टाका लगाए, कुछ लगाए, काफ़ी डिडक्शंस हो जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर रहेगा कि आप गोल्ड म्यूचुअल फंड का चुनाव करें। और गोल्ड म्यूचुअल फंड एकदम नॉर्मल म्यूचुअल फंड के तरह होता है, इसमें आप SIP के जरिए भी निवेश कर सकते हैं, केवल 500 रुपये महीने से भी कर सकते हैं, और ये एक फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ही ट्रैक करेगा। जो एक ETF होता है वो फिजिकल गोल्ड की वैल्यू को ट्रैक करता है और एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड उस ETF में पैसे लगा सकता है।
1: जी, अगले कॉलर है जयपुर से दीपेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: हाँ सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। मेरा जैसे सवाल है कि मैं दो म्यूचुअल फंड हाउस का लार्ज कैप फंड देख रहा था, तो एक ने 58 स्टॉक सेलेक्ट करके रखा और एक ने 28-30 स्टॉक करके रखा है, तो उसके बेस पे कोई सर मतलब है क्या कि कौन सा मतलब ठीक हो सकता है? भाई कम स्टॉक है तो उसमें ज्यादा स्टॉक है तो लार्ज कैप फंड का।
0: केवल इस वजह से कहना कि कौन सा फंड बढ़िया है, कौन सा कम अच्छा है, कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स है, ये मुमकिन नहीं रह पाएगा, क्योंकि मेन चीज़ इसमें डिपेंड करती है कि वो स्टॉक्स का जो चुनाव है वो कैसा है, वो पोर्टफोलियो कैसा है। बट हाँ, जो चीज़ आप बता रहे हो उससे मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ कि जो आपने बताया कि 28 स्टॉक वाला पोर्टफोलियो, उसका एक पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे जो पूरे पैसों का रिस्क है वो कंपैरेटिवली कम नंबर ऑफ स्टॉक्स में बटा हुआ है, ये फंड कंपैरेटिवली कम डाइवर्सिफाइड है, तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की होएगा दूसरे फंड से। अगर इसके स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे चल पड़े, ज़्यादा जो फंड मैनेजर्स ने जिन स्टॉक्स का चुनाव किया है, अगर उन स्टॉक्स का चुनाव उनका ज़्यादा अच्छा चल पड़ा, तो यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। और वहीं पे अगर वो नहीं चले या उनमें से कोई से नीचे गया तो वहाँ पे वो नीचे भी थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन थोड़ी सी कम है, ये एक फोकस्ड फंड है जो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में जिसने निवेश किया है।
1: और चलिए देखते हैं कि FPI का क्या रुख है इस महीने। अब तक अक्टूबर में अब तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 44,166 करोड़ रुपए निकाले। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 45,126 करोड़ रुपए भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में बिकवाली के जरिए निकाले गए। वैश्विक अनिश्चितता, US बॉन्ड्स यील्ड्स में बढ़ोतरी और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव से निवेशकों ने जोखिम से दूरी बनाए रखी, लेकिन प्राथमिक बाजार में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने निवेश जारी रखा है। अक्टूबर में अब तक उन्होंने प्राथमिक बाजार में 960 करोड़ रुपए का निवेश किया। ऋण बाजार में इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों का रुख मिला जुला है। अक्टूबर में अब तक

0: जनरल लिमिट रूट से 4,729 करोड़ रुपए डाले हैं, इसके उलट एफएआर से उन्होंने 1,921 करोड़ रुपए और वीआरआर से 233 करोड़ रुपए निकाले हैं।
1: और हितेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ लखनऊ से। हितेश जी स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
2: गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग मार्केट मंत्री जी एंड सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में क्या डिफरेंस है, और अगर मुझे अभी न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है फॉर नेक्स्ट 10 to 15 इयर्स के लिए, तो इनमें से कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करूं? थैंक यू।
3: जो हितेश जी, जो वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड है, ये दोनों एक अलग अलग प्रकार की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज है, मतलब ऐसे फंड्स हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ तो जो वैल्यू फंड है ये ज़्यादातर उन स्टॉक्स में निवेश करेगा जो कि उस फंड मैनेजर की समझ में अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से सस्ते में मिल रहे हैं, जो कि जो फंड मैनेजर है जो स्टॉक्स का चुनाव कर रहे हैं उनको लगता है कि ये वाले स्टॉक्स की वैल्यू उनके अभी आज के मार्केट प्राइस से कहीं ज़्यादा है और आगे आने वाले समय में वो बेहतर करेंगे। तो जैसे कोई चीज़ होती है ना, हमको लगता है कि अच्छी चीज़ और सस्ते में मिल रही है, तो एक तरीके से वैल्यू फंड का जो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है हम उस तरीके से कह सकते हैं। और वहीं पे जो कॉन्ट्रा फंड है वो थोड़ा सा जो मार्केट से एक अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जो अलग स्टॉक्स चल रहे होते हैं जो नॉर्मली बाकी के फंड्स इनमें नहीं करते, वो वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, उन स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इन दोनों में से कौन सा बेहतर रहेगा के लिए मैं कहूँगा कि देखिए, आप थोड़ा थोड़ा पैसा दोनों में ही लगा सकते हैं। एक जो इक्विटी पोर्टफोलियो होता है उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को भी डाइवर्सिफाई कर देते तो अच्छा रहता है। आप जो भी आपका इक्विटी पोर्टफोलियो है, जो आपका फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो है, उसका टोटल जो पैसा है उसका कुछ 20-25% पैसे को आप इन दोनों में थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल में डाइवर्सिफिकेशन लाना बेहतर रहेगा। कभी होता है कि एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल चलता है तो दूसरा नीचे रहता है, तो वहां पे आपके लिए रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा।
1: All right, let's turn our attention to the market regulator. SEBI is expected to issue guidelines on determining derivative settlement prices on expiry days within a week. Chairman Tuhin Kanta Pandey said the regulator is examining around 20,000 public comments received on its consultation paper on the closing auction session mechanism. The proposed changes aim to address concerns over the impact of closing prices on derivative settlement. Mr. Pandey said SEBI is also reviewing regulations governing depositories and participants to simplify compliance and strengthen fraud prevention. He added that changes to clearing arrangements for certain transactions, including share buybacks and tender offers, are targeted for implementation by the end of November. Meanwhile, SEBI is also working to simplify digital onboarding for overseas investors and strengthen cybersecurity, disaster recovery and business continuity across market infrastructure institutions. Mr. Pandey said guidelines on the responsible use of artificial intelligence and machine learning will be issued shortly, with safeguards including clear accountability, data controls and human oversight. Akar, we'd like to have your opinion on this. How do these guidelines, are they aiming to have more transparency and fairness in the derivative market?
3: Yes, seems like. Yeah, definitely. I mean, the government is, the regulators are trying to, make the things much better for the investors.
1: All right. Jay.
0: और अभी एक कॉलर का सवाल मुझे याद आ गया और मुझे लगा कि शायद उस पर एक और चीज़ जोड़ दूं मैं, जो एक साल के लिए निवेश की बात कर रहे थे कि 10 लाख रुपए अगर मुझे एक साल के लिए लगाने हैं, और आपने लास्ट में कहा कि एफडी, क्योंकि अभी बैंक रेट बढ़े हैं अभी, हालांकि वो देखते हैं हम ग्राहकों तक उसकी मतलब उसका असर पहुंचता कब है और कब हमें एफडी के बढ़े हुए रेट मिलते हैं, तब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम पैसे कहाँ रखें।
3: हाँ जी, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें जाएगा, क्योंकि अब आज की तारीख में जो टैक्स रेट है वो दोनों चीज़ों पे सेम है
0: जी।
3: एफडी का जो इंटरेस्ट है वो भी आपकी एनुअल इनकम में ही ऐड होकर टैक्स होता है, और जो लिक्विड फंड में जो आपके गेन्स होते हैं वो भी आपके एनुअल इनकम में रहता है, ऐड होकर लगता है. बट यहाँ पे जो एक थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जहाँ पे मेरे को लगता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है

0: वो एक स्टेप ऊपर है, एक एडवांटेज पे है। वो ये है कि जैसे यहाँ तो केवल एक साल की बात थी, लेकिन अगर कहीं पे होता है कि आपका कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मनी है फिक्स्ड इनकम का, जैसे कि 2-3 साल का हो गया, वहां पे आपको हर साल टैक्स नहीं देना होगा। एफडी में जो इंटरेस्ट है, भले ही आपको हर साल आपके अकाउंट में ना है, वो खाली अक्रू हो रहा है,
1: तभी भी
0: मच्योरिटी पे
1: टैक्स
0: मिलेगा
1: लगेगा।
0: आपको, तब भी हर साल टैक्स देना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप बेचेंगे, आपको केवल तभी गेंस पे टैक्स देना है।
1: तो ये फायदा तो है
0: जी
1: म्यूचुअल
0: बिल्कुल
1: फंड्स में आने का।
0: बिल्कुल, वो कंपाउंडिंग आपके लिए थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और वहीं पे जैसे कि तब मैं उस वक्त बता रहा था कि आपको एक टाइम का कमिटमेंट नहीं देना पड़ता। जैसे कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि हमारे एक इमरजेंसी का पैसा है, कुछ लाख रुपए है जो हमने रखे, लेकिन हमको एग्जैक्टली कब यूज़ करने है हमको नहीं पता। अगर हम एफडी में निवेश करते हैं तो हमको एक टाइम कमिटमेंट देनी पड़ती है, जैसे कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, और अगर उससे पहले उनकी आवश्यकता पड़ती है, उनको निकालते हैं, तो इंटरेस्ट रेट पे एक पेनल्टी पड़ जाती है। बट म्यूचुअल फंड्स के केस में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे पूरी लिक्विडिटी है, आप कभी भी उनको रिडीम कर सकते हैं।
1: थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन उसके साथ कुछ एडवांटेजेस भी
0: जी
1: हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जी
2: आर नेक्स्ट कॉलर जॉइन्स अस फ्रॉम मुंबई। सोमनाथ जी सवाल पूछें।
3: हेलो। हेलो सर,
2: हाँ जी सोमनाथ जी सवाल पूछें।
3: अभी का मार्केट कंडीशन में
2: प्लीज रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ योर रेडियो सेट। सोमनाथ जी आपकी आवाज एको कर रही है। जी बताएं।
3: हेलो।
1: जी बताएं।
3: अभी का मार्केट कंडीशन में
1: जी लगता है उनकी लाइन पे कुछ गड़बड़ी है, कहीं कोई डिस्टरबेंस है, लेकिन हम इतना सुन पाए कि अभी के
0: मार्केट
1: मार्केट
0: कंडीशन।
1: कंडीशन में क्या होगा। और
0: तो सोमनाथ जी देखिए, आपका पूरा सवाल तो हम नहीं सुन पाए, लेकिन अभी जितना मैं आपको बता पाऊंगा कि जो मुझे लगता है कि आप पूछना चाह रहे थे कि इस मार्केट कंडीशन में कहाँ निवेश करना चाहिए, या फिर दूसरा हो सकता है कि आपके लिए अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए मार्केट का जो सिचुएशन रहता है, ये रोज़ बदलता है, हर थोड़े दिनों में बदलता है। शॉर्ट टर्म में ये कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा। जो इक्विटीज़ है, जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसका नेचर ही ऐसा है कि ये स्थिर नहीं रहता, ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो और ये हमारे एक आम आदमी के कंट्रोल में भी नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में एक निवेशक के लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों पे ध्यान दें जो हमारे कंट्रोल में है, और उस हिसाब से हमारा निवेश प्लान करें। यहाँ पे सबसे पहले आते हैं कि हमारे को वो पैसा कब चाहिए, हमारा जो गोल है, हमारा वो गोल क्या है, हमारे को कितने सालों में चाहिए, किस पर्पस के लिए हम लोग निवेश कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए जो लॉन्ग टर्म का है, और उस पे हमारे को डटे रहना है, उस पे स्टिक होके रहना है। बीच में घबराना नहीं है जब भी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आए, और हर थोड़े समय में साल में एक दफ़ा उसको प्लान को रिव्यू भी कर लेना चाहिए कि क्या हमारे को इस प्लान में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। कि जैसे अगर आप रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ रहे थे, अगर आप रिटायरमेंट के पास आ रहे, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आपने जिन स्कीम्स में निवेश किया था, क्या वो स्कीम्स अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उन्हीं में पैसा कंटिन्यू करे या ना करे, या बदलने की ज़रूरत है।
2: ऑल राइट, आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम महाराष्ट्र, गुरुनाथ। गुरुनाथ जी स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
4: नमस्कार मैडम
2: जी। नमस्कार।
4: मैम सर से मेरा एक क्वेश्चन है। अभी मेरे पास इन्वेस्टमेंट समझो 2 लाख का, मतलब किस फंड में मुझे जाना चाहिए? 1 साल के लिए मुझे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए है, तो उसमें कम से कम रिस्क हो और कुछ अच्छा रिटर्न मिले, तो कुछ ऐसे फंडों के बारे में थोड़ा बताइए। थैंक यू।
0: गुरुनाथ जी, जो आपने मेरे को अपना होराइजन बताया 1 लाख का, सॉरी 1 साल का, और 2 लाख का, 2 लाख रुपए आप निवेश करना चाहते हैं, तो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका एक होराइजन है वो फिक्स्ड है, आपकी जो नीड है वो फिक्स्ड है कि आपको 1 साल के बाद इस पैसे की आवश्यकता होगी। देखिए जब भी थोड़े समय के लिए पैसे लगाना हो ना, तो हमारी जो एक नीड होती है, वो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो रिटर्न कमाना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये रिटर्न हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो पैसा सिक्योर रहे, जिसको हम लोग प्रिजर्वेशन ऑफ कैपिटल बोलते हैं, और साथ ही में एक ठीक ठाक

0: fun data.
1: आकार आज वक्त इतना ही है मार्केट मंत्र में आने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी धन्यवाद
0: Listeners, before we wrap up today's show, a reminder of the headlines. In Indian bullion market, gold and silver prices end on mixed note last week. Foreign portfolio investors sell equities worth over 45,000 crore rupees on stock exchanges, infuse more than 900 crore rupees through primary market in October so far. And domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings and geopolitical developments for Qs next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.
1: मिलेट्स प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है. मुख्य रूप से ज्वार बाजरा रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है जिनका उपयोग रोटी दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है.
2: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी.
3: दिल्ली टूरिज्म लेकर आ रहा है डांडिया रीबॉर्न. दिल्ली के संग ढोल की थाप डांडिया की धूम और नवरात्रि के रंग 11 और 12 अक्टूबर 2026 शाम 5 से रात 10 बजे तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेट नंबर 14 दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता और पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी के साथ इस उत्सव में शामिल हों. और जी हाँ, सबसे खास बात, इस रंगीन जश्न में एंट्री है बिल्कुल फ्री. डांडिया रीबॉर्न दिल्ली, ताल मिलाओ रंग जमाओ.
4: तो शुरू करें इन्वेस्ट.

11:42 हो चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर स्वागत है आप सबका। प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत, आपके साथ मैं विकास।

0: विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर का पावर हाउस है जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा व बालों को स्वस्थ रखता है। प्रतिदिन आंवले का सेवन आपको स्वस्थ बनाए रखता है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: मोरिंगा यानी सहजन के पत्तों का पराठा खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही ये आपको भरपूर ऊर्जा देती है। सही मात्रा और सही विधि के लिए आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूरी है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध मुफ्त आयुष चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाएं।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण व्यायाम की एक प्रक्रिया है। दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ, पूरा दिन रहे ऊर्जावान।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: श्री अन्न यानी बाजरा, ज्वार, चौलाई आदि सुपाच्य, सुरक्षित और स्वास्थ्य वर्धक है। बच्चों के आहार में बाजरे को शामिल करने से कमजोरी और दुबलेपन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो कि गेहूं का एक उत्तम पौष्टिक एवं फाइबर युक्त विकल्प है। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि ग्लूटेन फ्री अनाज है, जिनका उपयोग रोटी, दलिया और खिचड़ी आदि बनाने में किया जा सकता है।
1: दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी, दिल्ली सरकार द्वारा जनहित में जारी।

रफी साहब और लता जी की आवाज के साथ छोड़े जा रहा हूँ आपको, और फिल्म का नाम है बनारसी ठग। विकास चाहता है आपसे इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में शनिवार की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। भारतीय दूतावास ने बताया है कि रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायलों में से एक भारतीय नागरिक की कल मौत हो गई। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वे शोक संतप्त परिवार के संपर्क में हैं और शव को जल्द से जल्द भारत पहुंचाने के लिए हर संभव मदद करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि रियाद हवाई अड्डे पर हमले के बाद रियाद में भारतीय दूतावास हर जरूरी कदम उठा रहा है। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111
1: नमस्कार, कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं निशा भारद्वाज अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स 111 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अपनी मन की बात में लिए गए विभिन्न विषयों में से किसी एक विषय पर केंद्रित होता है। माननीय प्रधानमंत्री ने अगस्त और सितंबर माह में आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे 100 सप्ताह के अभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का उल्लेख किया है। तो आज के हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विकसित भारत के लिए देश में युवाओं का नशा मुक्त होना क्यों आवश्यक है और इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसी समस्त जानकारी देने के लिए आज आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। नमस्कार सर, और बहुत स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद निशा जी।
1: श्रोताओं, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और यही युवा शक्ति हमारे देश को विकसित भारत बनाने का सबसे बड़ा आधार है, लेकिन इस सुनहरे भविष्य की राह में नशा एक ऐसी दीवार है जो हमारे युवाओं की क्षमता को कमजोर करती है। तो इससे पहले कि हम आज की अपनी बातचीत का क्रम आगे बढ़ाएं, आइए पहले सुनते हैं मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय का उल्लेख कर रहे हैं।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में देश के लाखों युवाओं ने नशे के विरुद्ध, ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। युवाओं ने खुद भी नशे से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है। ये सब हो रहा है नशा मुक्त युवा अभियान के तहत। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा। इसमें माई भारत के वॉलंटियर शामिल है, एनएसएस से जुड़े हमारे युवा भी इसका हिस्सा है, स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय भी साथ आए हैं और अनेक सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में ही देश भर में हजारों संकल्प समारोह और जागरूकता के कार्यक्रम हुए हैं। साथियों, इस अभियान में एक बात मुझे विशेष रूप से अच्छी लगी, नशा मुक्ति का संदेश हमारे युवा खुद अपनी भाषा में अपने तरीके से इस संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने मन की बात में भी युवा साथियों से आग्रह किया था कि वे अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से इस अभियान से जुड़े और मुझे खुशी है कि हजारों युवा इस आह्वान पर आगे आए हैं। माय भारत पर एंथेम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई है।

0: इसी तरह सोशल मीडिया पर हमारे युवा हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ अपना क्रिएटिव कंटेंट साझा कर रहे हैं, यानी संदेश भी युवाओं का है, माध्यम भी युवाओं का है और इसे आगे ले जाने की ऊर्जा भी युवाओं की ही है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत हेल्थ चेकअप और ध्यान शिविर जैसी गतिविधियां भी होंगी। साथियों, जल्द ही हमारे अनेक पर्व और त्योहार भी आने वाले हैं। इस बार त्योहारों की खुशियों के बीच हम अपने आसपास भी नजर डालें। अगर कोई युवा किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
1: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और हमारे साथ हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध नशा मुक्त भारत अभियान आज एक बहुत बड़ा देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। इस अभियान का असली उद्देश्य क्या है? भारत के युवाओं के लिए और देश को आगे बढ़ाने यानी विकसित भारत बनाने के लिए इसका नशा मुक्त होना क्यों जरूरी है?
2: देखिए, आज अगर हम विश्व में देखें तो भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। हमारे यहाँ 15 वर्ष से लेकर के 29 वर्ष तक की जो एक ब्रैकेट है, इसमें 37 करोड़ युवा हैं। ये युवा ही आज हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी है और यदि इस युवा शक्ति को हम अपने राष्ट्र के विकास में सही तरह से उपयोग में लाते हैं तो ये हमारे लिए एसेट बनेगा। लेकिन अगर यही युवा अपने आप को ड्रग्स वगैरह के एडिक्शन में, अल्कोहल के एडिक्शन में अगर एंगेज कर लेते हैं तो इनका जो कंट्रीब्यूशन हमारे राष्ट्र के विकास में होना चाहिए वो हो नहीं पाएगा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी इस स्कीम पे बहुत जोर दे रहे हैं, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। जो भी विकसित देश आज विश्व में हैं, उन्होंने अपनी युवा शक्ति को अच्छी तरह से हार्नेस किया है, उनकी एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से यूज किया है और यदि हम विकसित बनना चाहते हैं 2047 तक तो हमें भी यही करना होगा।
1: जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला प्रश्न ये है सर कि मादक द्रव्यों का सेवन एक जटिल और निरंतर बदलने वाली चुनौती है। पूरे देश में ये समस्या कितनी बड़ी है और किस तरह की नई नई प्रवृत्तियां देखने को सामने आ रही हैं, इसका पता लगाने के लिए क्या कुछ प्रणालियां अपनाई जा रही हैं?
2: देखिए, ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर है एम्स दिल्ली में, तो उन्होंने एक नेशनल सर्वे किया और उस सर्वे में उन्होंने अल्कोहल का, ड्रग्स का और जो इंजेक्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं इन सभी का उन्होंने सर्वे से पता लगाया। तो इसमें ये मालूम चला कि आज की तारीख में हमारे देश में लगभग 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं और इनमें से करीब 5% ऐसे हैं जो कि इस पे डिपेंडेंट हैं, जो इसके बिना कुछ कर नहीं पाते। और इसी तरह से जो गांजा है या उसके जो और पदार्थ हैं तो उनकी संख्या भी 3 करोड़ से ज्यादा है और जो ओपियोइड्स हम बोलते हैं उसकी संख्या करीब 2.25 करोड़ है। और जो चिंता का विषय इसके अंदर है वो ये है कि इसमें बच्चों की और एडोलेसेंट्स की संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ये सब इस सर्वे के थ्रू सामने आया है। इसके अलावा समय समय पर जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी होते रहते हैं, तो इन सब से भी हमें जानकारी मिलती है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। और जो सीजर्स हो रहे हैं, जो प्रिवेंटिव मशीनरी जो हमारी जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, नेशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, तो ये सब भी जो है इनके सीजर्स किस तरह से हो रहे हैं उससे भी हमें आइडिया लगता है कि ये समस्या कितनी बढ़ गई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल के मन की बात के कार्यक्रमों सहित विभिन्न अवसरों पर विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा के महत्व पर बार बार बल दिया है। आप स्वस्थ एवं नशा मुक्त युवा आबादी और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भारत की यात्रा के बीच संबंध को किस प्रकार देखते हैं?
2: देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारी जो युवा शक्ति है ये हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आज की तारीख में हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इन युवाओं की प्रोडक्टिविटी का हमें पॉजिटिव यूज करना है और आज की तारीख में जैसा हम देखते हैं कि 37 करोड़ युवा हैं जो करीब 27% हैं।

0: हमारी जनसंख्या का, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। धीरे धीरे हमारी जनसंख्या भी स्टेबलाइज हो रही है और ये अनुमान लगाया जाता है कि 2036 तक जो है ये युवा जो एक ब्रैकेट है इसके अंदर करीब 22% लोग बचेंगे। तो इन्हें हमें पॉजिटिवली यूज करना है। अगर एक युवा नशाग्रस्त होता है तो उसका स्वास्थ्य खराब होता है, और अगर उसको उसका परिवार नशे के लिए पैसे नहीं दे पाता है या उसके स्वयं के पास वो नहीं कमा पाता है तो वो छोटे मोटे अपराध भी करने लगता है। तो समाज को ये नुकसान होता है कि उसमें एक अपराधी उत्पन्न होता है। तो एक युवा के नशाग्रस्त होने पर युवा का नुकसान होता है, परिवार का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, यानी कि राष्ट्र का नुकसान होता है। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने युवाओं को इससे दूर रखें, क्योंकि तभी हम अपने विकसित भारत का अरमान पूरा कर पाएंगे, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो एक उद्देश्य दिखाया है, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे।
1: तो ये मान सकते हैं कि लक्ष्य बहुत बड़ा है और समय बहुत ही सीमित है हमारे पास। इससे पहले कि हम चर्चा अपनी आगे बढ़ाएं, उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते हैं ये गीत।

0: कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आपका फिर से स्वागत है और आज हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी। तो सर, अगला प्रश्न आपसे ये है कि इन क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा कार्य किए जाने के मद्देनजर समन्वित राष्ट्रीय कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उनकी संबंधित भूमिकाओं में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जा रहा है?
1: देखिए, ये बहुत जरूरी है कि जो सरकार के अलग अलग विभाग हैं वो इसमें मिलकर काम करें और साथ में हम समाज को भी जोड़ें, परिवारों को भी जोड़ें। तो जहां तक सरकार की बात है, सरकार इसमें चार स्तंभों पे काम कर रही है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन। तो प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जो भी ये पदार्थ हैं इनकी उपलब्धता को कम करना, उसको रोकना, जो ट्रैफिकिंग वगैरह हो रही है, इस पे हमारा गृह मंत्रालय काम कर रहा है, उनकी एजेंसियां काम कर रही हैं। दूसरा स्तंभ जो मैंने बताया, प्रोटेक्शन, तो हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि इन चीजों के कितने दुष्प्रभाव हैं। इस काम में जो हमारा विभाग है, युवा कार्यक्रम विभाग जो है, वो इस दिशा में कार्य कर रहा है। और न केवल हम अवेयरनेस फैलाते हैं बल्कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, माई भारत पोर्टल है हमारा, उसमें हमारे वॉलंटियर्स हैं और हमारा जो NSS है, जो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में और विद्यालयों में है 11वें और 12वें में, उसके द्वारा जो युवाओं की एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हम चैनलाइज करते हैं। बाकी के जो दो स्तंभ हैं, सपोर्ट एंड रिहैबिलिटेशन, इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट काम करती है कि अगर कोई नशे की लत में पड़ जाता है तो उसको कैसे उससे बाहर निकाला जाए और उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। तो इस तरह से ये तीनों जो एंटिटीज हैं सरकार की, ये मिलकर इस दिशा में कार्य कर रही हैं।
0: नशा मुक्त भारत के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है, यानी कि इनको एक साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। जमीनी स्तर पर विशेष रूप से युवाओं, परिवारों और स्थानीय समुदायों के लिए इस दृष्टिकोण का क्या अर्थ हम समझ सकते हैं?
1: देखिए, इसमें जो पूरी, अगर मैं इसको जंग कह सकूं, इसमें हमारे उनके परिवारों का, युवाओं के परिवारों का, सभी के परिवार का और समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि सबसे पहली यूनिट परिवार है जिसको ये मालूम चलेगा कि कुछ अनयूजुअल हो रहा है, कुछ चीज नॉर्मल नहीं है। तो वही इसको आइडेंटिफाई करके और जो भी इसकी तरफ बढ़ रहा है उसको वहीं रोक सकते हैं। अगर वो ज्यादा आगे बढ़ गया है तो उसका डी एडिक्शन होता है, रिहैबिलिटेशन होता है, उसकी तरफ उसको ले जा सकते हैं। समाज का ये योगदान रहता है कि अगर ऐसा कुछ भी इस तरह के पदार्थों की बिक्री हो रही है तो उसके बारे में समाज में किसी न किसी को तो मालूम चल ही जाता है, तो वो इसकी जो संस्थाएं हैं जो इसकी रोकथाम की व्यवस्था करती हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दे। इसके अलावा अगर कम्युनिटी एकजुट होकर ये कहती है कि हमारे यहाँ कोई नशा नहीं करेगा, इन सब चीजों से हम दूर रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो बहुत चीजें, उनके जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसमें सीखते हैं, तो उस दृष्टि से इसमें जो हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं और इन स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जब व्यक्ति जुड़ता है तो वो कई बार अपने पूरे परिवार के साथ जुड़ता है। तो इसमें भी अगर इस विषय

0: की चर्चा होती है, इनके दुष्प्रभाव बताए जाते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से परिवार का, समाज का, जो ये समाज सेवी संस्थाएं हैं, इनका, जो हमारी शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उनका, हम सभी का इसमें योगदान है।
1: तो सामाजिक तौर पे हम देखें तो जागरूकता और चेतना लाना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है इस दिशा में। अगला प्रश्न है, युवा कार्यक्रम विभाग ने माय भारत के माध्यम से विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान को युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन के रूप में शुरू किया है। युवाओं को केवल लाभार्थी के रूप में देखने के बजाय स्वयं उन्हें अभियान के केंद्र में रखने के पीछे की क्या सोच है?
0: अगर हम किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जिसको ये नशे की आदत पड़ी, तो कई बार हमें ये उत्तर मिलेगा कि ये आदत उसको क्यों पड़ी, कि वो किसी तनाव में था, उसके ऊपर कोई प्रेशर था, या जस्ट फॉर फन उसके आसपास के लोगों ने, उसके साथियों ने उससे कहा बस एक बार। ये बस एक बार जो है अनफॉर्चुनेटली बार बार बन जाता है। तो इसीलिए अगर युवा इसका लाभार्थी न होकर के खुद ही इसका संदेश वाहक होगा, तो जो ये बस एक बार की बात है, ये नशा करने के लिए नहीं कही जाएगी, ये बल्कि कोई समाज सेवा का कार्य करने के लिए कही जाएगी, किसी अच्छे काम के लिए कही जाएगी। इस दिशा से युवाओं का खुद का इसमें बहुत महत्व है, उनकी जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि कोई नशे में चला गया है, किसी को मालूम चला कि उसका दोस्त जो है वो नशे में चला गया है, तो उसको बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ये एक युवा, उसका जो मित्र है, वो उसको अच्छे से दे सकता है। तो इसीलिए इस पूरी योजना का, इस पूरी कैंपेन का फोकस ये है कि युवा इसमें सहभागी बने, ना कि लाभार्थी।
1: युवा सहभागी बने और अपने मित्रों से, अपने परिवार से, अपने समाज से जब चाहे, जैसी चाहे आवश्यकता उन्हें पड़े मदद ले सकें। इस तरीके का एक ओपननेस होनी चाहिए, उस तरीके का एक इंड्यूसिव एनवायरनमेंट उसको मिलना चाहिए बच्चे को। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान दीर्घ अवधि तक युवाओं की सहभागिता बनाए रखने का प्रयास करता है। इस विस्तारित अभियान का उद्देश्य क्या है और ये एक बार की जागरूकता गतिविधियों से आगे बढ़कर निरंतर व्यवहारगत तथा सामुदायिक स्तर पर परिवर्तन लाने की दिशा में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा पाएगा?
0: जैसा कि आपने बताया कि ये कार्यक्रम जो है ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है। इसको 100 सप्ताह का रखने का भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जो भी रिसर्च हुआ है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज को 21 दिन तक करते हैं तो हम उसके लिए अक्लेमेटाइज होते हैं, वो हमारे लिए एक रूटीन में आता है। अगर उसको हम 66 दिन तक करते हैं तो ये हमारी जो है ऑटोमेटिक बनने लगती है ये हैबिट। अगर हम इसको 1 साल तक करते हैं तो ये हमारी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट होता है, और अगर हम इसको 100 हफ्ते तक कर लेते हैं तो ये हमारी आइडेंटिटी में लॉक हो जाता है, ये हमारे अंदर इतना डीपली इंग्रेन हो जाता है कि फिर ये हटता नहीं। तो इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम को 100 हफ्ते का रखा गया है। जैसे हमारा जो NSS प्रोग्राम होता है, जो कि हम कॉलेजेस और 11th एंड 12th में चलाते हैं, उसमें भी उसकी ड्यूरेशन भी हम लोग 2 साल रखते हैं, तो 2 साल लगभग 100 हफ्ते हो गया। तो ये इसमें, जिससे कि ये उनकी एक आदत बन जाए, ये उनके जहन में उतर जाए, जिससे कि वो आगे भी कभी इस विषय में ना सोचें कि हम कोई नशा करेंगे। और इसमें एक चीज और आ जाती है कि हम केवल एक चीज पर जोर नहीं दे रहे। हमने जैसे शुरुआत हमने की थी कि हम प्लेज लेंगे, हम सभी लोग संकल्प लेंगे नशे से दूर रहने का, उससे आगे बढ़कर हम लोगों ने पूरा ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया है। तो इसमें हम परिवार को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम समाज को इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम हेल्थ की बात करेंगे, फैमिली की बात करेंगे, लाइफ स्किल्स की बात करेंगे, हम जो है स्पिरिचुअल एंगेजमेंट की बात करेंगे, फिटनेस की बात करेंगे। तो ये सभी चीजों को मिलाकर के ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम बनाया गया है।
1: तो एक तरीके से हम बात करें तो होलिस्टिक अप्रोच से आप इस चीज को केटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा मुक्त जो अभियान है वो हर लेवल पर, हर स्तर पर समाज में कार्य कर सके।
0: जी
1: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समुदाय आधारित तंत्र के रूप में नशा मुक्ति मित्र नेटवर्क विकसित कर रहा है। युवा कार्यक्रम विभाग, माय भारत, NSS और अपने युवा स्वयंसेवी नेटवर्क के माध्यम से जमीनी स्तर पर इस पहल को किस प्रकार पूरक सहयोग प्रदान करें,

0: से सुदृढ़ता प्रदान हो सके।
1: जैसा कि मैंने बताया था कि तीन विभाग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट ने एक कार्यक्रम लेके आए हैं, नशा मुक्ति मित्र। तो ये नशा मुक्ति मित्र जो हैं वो वॉलंटियर्स हैं जो पहले ये समझेंगे कि किस किस तरह के नशे होते हैं और इनके क्या दुष्प्रभाव हैं और इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, यदि कोई इससे प्रभावित हो चुका है तो उसको कैसे मदद की जाए, डिएडिक्शन सेंटर्स कहाँ पर है, काउंसलिंग सेंटर्स कहाँ पर है। माय भारत जो कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आज की तारीख में 3 करोड़ से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं। नेशनल सर्विस स्कीम जो NSS है उसमें आज हमारे पास करीब 40 लाख वॉलंटियर्स हैं। तो ये वॉलंटियर्स जो हैं ऑलरेडी कम्युनिटी सर्विस का काम कर रहे हैं और अपनी इच्छा से कर रहे हैं, तो इनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट का जो नशा मुक्ति मित्र है उसमें ये लोग एनरोल करें, और ये लोग कर भी रहे हैं। 18,000 से ज़्यादा हमारे वॉलंटियर्स उसमें रजिस्टर कर चुके हैं, और इसके अलावा हमारी पहुँच जो है वो कम से कम 30,000 इंस्टीट्यूशंस तक है। तो ये पूरे नेटवर्क को भी हम उनके सपोर्ट के लिए ला रहे हैं, पर इस पूरे में हमारा प्रयास ये है कि हम जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें उनको सप्लीमेंट करें, ना कि उसको डुप्लीकेट करें।
0: तो इस तरह की सामाजिक चुनौती का समाधान जब हम देखते हैं तो अकेले सरकार का कार्यक्रम नहीं हो सकता, इसमें गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज संगठन, आध्यात्मिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान, उद्योग जगत, खेल निकाय और अन्य सामुदायिक संगठन नशा मुक्त भारत आंदोलन में सार्थक भागीदार किस प्रकार बन सकते हैं?
1: आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें सभी को मिलकर कार्य करना है। तो हमने जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 125 से ज़्यादा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस होते हैं जैसे CII है, FICCI है, SOCHM है, ये भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। फिर जैसा कि जो मैंने बताया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो इनके जो एसोसिएशंस हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जैसे CIPU बोलते हैं, FC बोलते हैं, AIU बोलते हैं, ये सब भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ये हम जो कोशिश कर रहे हैं होल ऑफ प्रॉब्लम अप्रोच, जो पूरी ये समस्या है इसको जड़ से लेकर के पत्ती तक इसको ख़त्म करना है, तो इन सभी लोगों को हमने अपनी यात्रा में शामिल किया है और हम सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं।
0: तो जड़ से लेकर पत्ती तक इस समस्या का समूल जो विनाश है, हम चाहते हैं कि हमारे लिसनर सुन रहे हैं आज इस कार्यक्रम को, ये करें और इसमें भागीदार बने। युवाओं को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से रोकने में माता पिता, शिक्षक, युवा नेताओं और सहपाठियों की क्या भूमिका हो सकती है? क्या रोकथाम को केवल कभी कभार चलाए जाने वाले जागरूकता अभियानों तक सीमित रखने के बजाय युवा विकास की दैनिक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा सकता है?
1: ये बात सही है, और हमने भी हमारी सोच भी यही है कि ये एक इवेंट नहीं है और न ही ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। ये पूरा जो एक समाज की जो सोच है उसमें बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है, इसीलिए हर एक पहलू पे ध्यान दिया जा रहा है। और जो लोग समाज को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं, ताकत रखते हैं, वो सभी इसमें इन्वॉल्व है। सबसे पहला उदाहरण तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का ही दूंगा, जिन्होंने ये उद्देश्य हमारे सामने रखा है कि यदि हमें विकसित भारत बनना है तो हमें नशा मुक्त होना होगा, तो वो खुद एक सबसे बड़े आइकॉन हैं हमारे देश में। इसके अलावा जो भी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं हम सभी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अच्छा रसूख रखते हैं, उन सभी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। इसके अलावा जो हमारी खुद की प्रक्रिया है वो भी युवाओं में से जो उनके अच्छे आइकन्स हैं, यूथ आइकन्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करती है। चूंकि हम यूथ पार्लियामेंट करके कार्यक्रम चलाते हैं जो कि जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होता है। इसके अलावा हम लोग का विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग होता है जो कि बहुत बड़ा इवेंट है, अगेन वो भी जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक आता है, और स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस 12 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए 10, 11 और 12 को इसको भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जाता है, और 12 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें शामिल होते हैं, और पिछले 2 कार्यक्रमों में उन्होंने कम से कम 6-7 घंटे पूरे दिन में जो है इसको दिए हैं। तो इससे भी इन सभी सफल लोगों का उदाहरण देकर हम मोटिवेट करते हैं।

0: हैं कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करो, नेगेटिवली नहीं।
1: जी, ऊर्जा को जो है सकारात्मकता की तरफ बहाया जाए, ना कि नकारात्मकता की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा यही है आपसे कि युवा कार्य विभाग के पास स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता का एक विशिष्ट तंत्र है। ये सकारात्मक अवसर युवाओं में विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मादक पदार्थों के दुरुपयोग के स्थान पर रचनात्मक विकल्प उपलब्ध कराने में किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं?
0: देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो युवा है वो क्या ढूंढता है जिंदगी में, वो एक पर्पस ढूंढता है, उसको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होनी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी की खोज रहती है और वो चाहता है कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिले जिसमें कि वो कंट्रीब्यूट कर सके। तो जो हमारे जो कार्यक्रम हैं, हम मेन वॉलंटियरिज्म पे हमारे कार्यक्रम जो हैं आधारित हैं। तो माय भारत जो है तो उसमें तो राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति हमारे से जुड़ सकता है, और जैसा मैंने आपको बताया, हमें खुशी है कि 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं। फिर हमारा जो NSS स्कीम है उसमें 40 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्काउट्स एंड गाइड्स का भी है। तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इन तीनों बातों का ध्यान रखते हैं, उनको एक पर्पस प्रोवाइड करते हैं, बिलोंगिंगनेस का फीलिंग देते हैं और कंट्रीब्यूशन करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो इस तरीके से जो उनकी एनर्जी है उसको हम पॉजिटिवली चैनलाइज करते हैं।
1: जी, पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हैं एनर्जी को युवाओं की, और युवाओं को मदद कर रहे हैं उनकी लाइफ का पर्पस ढूंढने में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को नशा मुक्ति का संदेश प्रसारित करने के लिए संगीत, नारों, नुक्कड़ नाटकों और डिजिटल सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। माय भारत युवाओं की रचनात्मकता और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किस प्रकार कर रहा है ताकि ये संदेश युवा वर्ग तक उनकी ही भाषा में पहुंचाना सरल हो सके?
0: जैसा कि आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 अगस्त के मन की बात में ये उल्लेख किया था कि नशा मुक्त युवा हैशटैग जो है उस पर युवा जो हैं वो कोई स्लोगन भेज सकते हैं, कोई अपना नाटक, नुक्कड़ नाटक टाइप कर सकते हैं, या फिर कुछ निबंध भी लिख सकते हैं, या स्लोगन बनाए, जो भी गाना बनाए, फोक सॉन्ग बनाए, इसका उन्होंने आह्वान किया था। तो उसी दिशा में हम लोगों ने हमारा जो माय भारत पोर्टल है उस पर 4 प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, जो कि 12 सितंबर से शुरू हुई, जो पहली जो प्रतियोगिता हुई है। इसमें हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी स्लोगन्स और स्ट्रीट प्ले और निबंध और फोक सॉन्ग्स इसमें आए हैं, और अभी इनका इवेल्युएशन करेंगे और इनमें से अच्छे वालों को रिकग्नाइज किया जाएगा। और इस चीज़ का उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से 27 सितंबर को भी किया था कि ऑलरेडी जो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने जो अर्ज किया था, उसको युवाओं ने बहुत अच्छे से लिया है, और नशा मुक्त युवा के हैशटैग पर ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आ रही हैं और वे जोर शोर से इसमें भाग ले रहे हैं। तो बेसिकली इस सब का उद्देश्य जो है वो ये है कि युवा जो है केवल मैसेज रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं के पॉजिटिव मैसेजेस अलग अलग तरीकों से बना भी रहे हैं और प्रसारित भी कर रहे हैं।
1: तो जो चैनल है वार्तालाप का, वो द्विगामी है, यानी कि आप मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं, आप मैसेज भेज भी रहे हैं युवाओं की तरफ, संदेश दोनों तरफ से बरकरार है। तो ये हम अपने लिसनर्स से अपील करना चाहेंगे इसी माध्यम से कि यदि आपकी भी कोई कंटेंट है, कोई सामग्री है जो कि आपको लगता है कि इससे संबंधित है और आप उसे भेजना चाहते हैं, तो आप हैशटैग नशा मुक्त युवा पर उसको भेज सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और हमारा आज का विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। हाल की नशा मुक्त युवा गतिविधियों में स्वास्थ्य, जागरूकता और निवारक उपायों को एक साथ जोड़ा गया है। क्या आपको लगता है कि भविष्य में स्वास्थ्य, फिटनेस, जीवन कौशल, स्वयं सेवा और सामुदायिक सहभागिता से जुड़े एकीकृत दृष्टिकोण को इस अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते हुए हम देखेंगे जल्द ही?
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया और पहले हमारी चर्चा भी हुई कि ये जो हमने कार्यक्रम बनाया है, ये 100 सप्ताह का कार्यक्रम है, तो इसको हमने चार थीम्स में बांटा है: प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर, लीड। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक्स इसमें लिए जाएंगे। जैसे अभी पिछले हफ्ते जो हमने उसमें किया वो था माई हेल्थ माई प्राइड। फिट यूथ पे भी हम जाएंगे, एडिक्शन फ्री यूथ पे, लाइफ स्किल्स के बारे में हम बात करेंगे, जो हमारे देश की जो संस्कृति है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो कई चीजों के विषय में हम इन 100 सप्ताह में बात करेंगे और उनको इन्वॉल्व करेंगे।
0: जी सर, सरकार नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत डिजिटल निगरानी और संस्थागत समन्वय को सुदृढ़ कर रही है। प्रौद्योगिकी और आंकड़े अभियान की पहुंच के मापन से आगे बढ़कर हम ये कैसे जान सकते हैं कि अभियान सिर्फ लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा है बल्कि इसका सच में कोई गहरा असर भी हो रहा है? इसके प्रभाव का आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है?
1: ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम कुछ योजना चलाते हैं, कोई कैंपेन चलाते हैं, तो ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, आवश्यक भी है कि उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है। जो टारगेट हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हम कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो इसके हमारे पास कई तरीके हैं। जैसा कि मैंने बताया, हमारे पास जो हमारा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है, उनके कई डी एडिक्शन सेंटर्स वगैरह हैं, काउंसलिंग सेंटर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर कितने लोग सहायता के लिए पहुँच रहे हैं। तो ज़रूर जब हम ये कैंपेन चलाएंगे तो वो नंबर बढ़ेगा पहले, क्योंकि उनमें जागरूकता आएगी। फिर धीरे धीरे अगर ये कैंपेन प्रभावी होगी तो जो लोग ड्रग ले रहे हैं उनका नंबर भी कम होना चाहिए, तो उसमें हम वो परिवर्तन देखेंगे। दूसरा जो है, जैसा कि आप जानते हैं, जो अल्कोहल का जो ऑफटेक है उसको भी हम लोग देख सकते हैं कि उस पर किस तरह से चेंज आ रहा है। और इसी तरीके से जो सरकार का जो फैमिली हेल्थ सर्वे होता है, तो जो पिछले आंकड़े मैंने आपको बताए थे कि अल्कोहल से कितने प्रभावित हैं, ड्रग से कितने प्रभावित हैं, तो ये जो है वो फैमिली हेल्थ सर्वे से आया था। तो उस तरह के सर्वे से भी हमें जानकारी मिलेगी कि हमारी जो एफर्ट्स हैं, जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, उनका धरातल पर कितना प्रभाव पड़ा है।
0: जी, धरातल पर प्रभाव क्या है ये जान रहे हैं। फीडबैक के माध्यम से इस सिस्टम को और अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसी दिशा में हम

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं पोस्टबॉक्स नंबर 111। आज के हमारे अतिथि हैं युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार में सचिव श्री सुनील पालीवाल जी, और आज का हमारा विषय है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। सर, आपसे अगला प्रश्न हमारा ये होगा कि सरकार ये कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि नशा मुक्त युवा अभियान से उत्पन्न प्रगति 100 सप्ताह की अवधि के बाद भी बनी रहे और ये एक सतत युवा एवं सामुदायिक आंदोलन का रूप ले, यानी कि कॉन्टिन्यूटी में चलता रहे इवन आफ्टर द अभियान।
1: ये बिल्कुल सही है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक इवेंट नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट नहीं है, ये ऐसा प्रयास है जिसमें हम चाहते हैं कि पूरा मानस बदल जाए, पूरी सोच बदल जाए। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि कोई भी आदत को एकदम डीपली इनग्रेन होने में, उसको हमारी आइडेंटिटी में समाहित होने में 100 सप्ताह का टाइम लगता है, लेकिन लोग बदलते जाएंगे, नए युवा इसमें जुड़ते जाएंगे। तो इस कारण से ये ज़रूरी है कि न केवल हम इसका आकलन करें बल्कि हम किसी न किसी रूप में इसको आगे चलाते रहें। तो जो हमारे जो वॉलेंटियर कार्यक्रम माय भारत है और जो NSS स्कीम है, तो उसमें हम कई थीम्स पे काम करते हैं। तो उन थीम्स में हम इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देंगे जिससे कि लगातार इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बनी रहे। और ये जो विभागों का जो कोऑर्डिनेशन शुरू हुआ है, इसको भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दे दिया गया है। माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में एक कमिटी है NCOD, तो ये एक स्ट्रक्चर जो है ये आगे भी लगातार चलता रहेगा, काम करता रहेगा, विभाग आपस में समन्वय करते रहेंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि ये जो समस्या है ये हमारे राष्ट्र में न केवल हम इसको जड़ से उखाड़ फेंकें बल्कि ये वापस पनप न पाए।
0: अगर कोई परिवार या युवा अपने आसपास नशे की बिक्री देखता है या खुद मदद चाहता है तो वो सरकार से कैसे संपर्क कर सकता है? क्या इसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या पोर्टल बनाया गया है?
1: सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री का एक डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है 1446। तो यदि कोई भी सहायता चाहता है तो वो इस नंबर को डायल करके प्राप्त कर सकता है।
0: इस अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में प्रशासनिक स्तर पर राज्यों या स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बिठाने में क्या कुछ चुनौतियां आपने देखी हैं, और मंत्रालय यदि उनका कोई समाधान कर रहा है तो उसके बारे में आप हमें अवगत कराएं।
1: जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस प्रयास में हम सभी एकजुट हैं, और हम जानते हैं कि भारत जो है इस मामले में थोड़ा ज्योग्राफिकली एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है, क्योंकि हमारे पश्चिम में जो है वो गोल्डन क्रेसेंट है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, जहाँ की इसका प्रोडक्शन काफ़ी होता है, और इसी तरह से हमारे पूरब में जो है वो गोल्डन ट्रायंगल है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, तो उसके बीच में हम पड़ते हैं। तो जो इस तरफ के जो राज्य हैं उनमें नेचुरली इसका प्रभाव ज़्यादा होगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर या पंजाब, हिमाचल इस तरफ, फिर श्रीलंका की तरफ जैसे तमिलनाडु वगैरह है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये सारी राज्य सरकारें, सभी राज्य सरकारें और खासकर ये राज्य सरकारें इसमें पूरा सहयोग केंद्र के साथ कर रही हैं और हम सब इसमें एकजुट हैं। जैसा मैंने आपको NCOD बताया कि ये जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर माननीय गृह मंत्री जी के चेयरपर्सनशिप में है, तो इसी तरह से हर राज्य के चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की इस तरह की एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग करते हैं, तो उसमें जो सारे कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं वो एड्रेस कर लिए जाते हैं। तो इसमें सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं और हम जरूर इसमें सफल होंगे।
0: भारत के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर, और एक सामान्य नागरिक परिवार, शैक्षणिक संस्थान या सामुदायिक संगठन नशा मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प में योगदान देने के लिए क्या कर सकता है?
1: जैसा हमेशा होता है कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम सभी साथ में हैं, और यदि प्रत्येक व्यक्ति खुद पे ध्यान देगा तो अपने आप जो हमारा गोल है वो हम अचीव कर लेंगे। मेरा हमारे राष्ट्र के युवाओं के लिए संदेश ये रहेगा कि जो ये जीवन है ये एक भगवान की गिफ्ट है, ये जीवन एक जिम्मेदारी भी है और एक जरिया भी, ये विरासत भी है और नजरिया भी।

0: इसे व्यर्थ न जाने दें, इसे जिएं, स्वयं को जानें, इसकी कमान खुद संभालें और खुद को उपहार दें उस जीवन का जिसे आप जीना चाहते हैं, जिसके आप योग्य हैं। अगर इंग्लिश में बहुत शॉर्ट में कहूंगा, लीड योरसेल्फ टू द लाइफ यू डिजर्व। बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: श्री सुनील पालीवाल सर, आज आपने हमारे देश के करोड़ों युवाओं को जो संदेश दिया है और जिस तरह सरकार के प्रयासों का,
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
3: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
2: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और देश के विकास में योगदान देने की अपील की।
3: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में शनिवार की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूतियों के हमले में 309 घायलों में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। इस हमले में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वह उन्हें हर संभव मदद देने के लिए उनके संपर्क में हैं। दूतावास ने बताया कि शनिवार को हुए हमले में घायल हुए लगभग 300 लोगों में 10 भारतीय भी शामिल थे। भारतीय अधिकारी घायलों की हालत के बारे में जानकारी लेने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन के संपर्क में हैं। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। नोएडा नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में कल अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। मिस्र में निशान

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू, आपके साथ कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रहिए मेरे साथ और सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत।

हाथों में तेरा हाथ हो तो यकीनन मुकम्मल है मेरी तकदीर, हाथों में तेरा हाथ हो तो यकीनन मुकम्मल है मेरी तकदीर, तुम रहना साथ।

जिंदगी चल तो रही है, मगर इसमें कोई बात नहीं। जिंदगी चल तो रही है, मगर इसमें कोई बात नहीं। नहीं लगता ये दिल तेरे बगैर, ऐसा लगता है कि जैसे दिन तो है पर रात नहीं।

दिन तो गुजर जाता है जमाने भर की मसरूफियतों में, दिन तो गुजर जाता है जमाने की मसरूफियतों में, पर ये दिल उदास हो उठता है तेरा ख्याल आते ही शाम की तन्हाइयों में।

चांद सा मुखड़ा तेरा, उस पर ये जुल्फों का पहरा, देखकर हो होश होश खो बैठता है जो भी देखे, रूप तेरा ये गहरा।

तेरी अदाओं ने दिल चुरा लिया मेरा इस कदर, तेरी अदाओं ने दिल चुरा लिया मेरा इस कदर कि अब खुद अपने ही दिल पर मेरा कोई अख्तियार नहीं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ अंजू। मेरी हर सांस पर बस तेरा ही हक है, मेरी हर सांस पर बस तेरा ही हक है, क्योंकि तुम्हें ही चाहा और पूजा हमने, इस बात में अपना कोई शक है।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी कार्यक्रम रात सुरमई लेकर। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे,

0: राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल योजना के दूसरे चरण के पूनमपल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में शनिवार की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। दुनिया भर के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने सऊदी अरब के रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किए गए हमले की निंदा की है। इस हमले में एक भारतीय नागरिक सहित 13 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमरीकी मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि अमरीका यमन के हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के हमलों में शामिल होने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरस, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने हमले की निंदा की है। पाकिस्तान, कतर, फलस्तीन, जॉर्डन और मलेशिया ने सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यूरोपीय संघ के प्रमुख ने नागरिकों पर हुए हमलों को जानलेवा बताया और कहा कि उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में कल अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए जबकि कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying the foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 10 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है रात सुरमई। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

मुझे दुनिया की दौलत और शोहरत से भला क्या लेना, मुझे दुनिया की दौलत और शोहरत से भला क्या लेना, कि बस तेरा प्यार ही काफी है मुझे जीने के लिए।

0: ना कोई शिकवा होता है और ना कोई शिकायत होती है, ना कोई शिकवा होता है और ना कोई शिकायत होती है, पर जब आंखों से आंखों की बातें होती हैं तो बस बेइंतहा मोहब्बत होती है।
1: सा रे गा मा, तुम भी गाओ।

वक्त की गर्द में कहीं खो न जाएं ये हसीन लम्हे, वक्त की गर्द में कहीं खो न जाएं ये हसीन लम्हे, न भुलाना इस दिल से ये मोहब्बत, चाहे कितने भी रहें फासले।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। अगला कार्यक्रम आपके साथ लेकर आएंगी मेरी दोस्त नीता हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी

0: आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा है कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
0: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहा मार्शल द्वीप ध्वजांकित टैंकर MT वाल्थेरा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एक अज्ञात प्रक्षेप्य से टकरा गया, जिसके बाद जहाज पर आग लग गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय चालक दल के सभी 11 सदस्य सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर MT पेट्रो डॉल्फिन पर सोहर एंकरेज में ड्रोन हमला किया गया। उन्होंने कहा कि चालक दल के 9 भारतीय सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, जबकि 2 भारतीय नागरिक फिलहाल लापता हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रालय लापता कर्मियों का सुरक्षित पता लगाने के लिए हर संभव कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों से लड़ रहे सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि कल रियाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक प्रोजेक्टाइल यात्री टर्मिनल से टकरा गया। इससे एक दिन पहले शनिवार को इसी टर्मिनल पर मिसाइल हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। हमले में घायल एक भारतीय यात्री की कल मौत हो गई। हुती विद्रोहियों ने इन सभी हमलों की जिम्मेदारी ली है। सऊदी अरब के अधिकारियों ने बताया कि कल के नए हमले में भी कुछ लोग घायल हुए हैं। शनिवार को हुआ मिसाइल हमला ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी के अरब देशों में सबसे घातक हमला था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कपिल कामिलपुरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11 और 18 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, हमारे जीवन में साथ का बहुत बहुत महत्व होता है। यही साथ जब गीतों के रूप में सजता है तो इस उस गीत की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है।

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। सचिन देव बर्मन का संगीत था। मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम बम्बई का बाबू। मित्रों, मौसम की रुत इन दिनों रोज बदलती मालूम हो रही है। गर्मी से सर्दी की ओर बढ़ते कदम, सुबह शाम थोड़ी थोड़ी सर्द होने की कोशिश में कुल मिलाकर मौसम बहुत सुंदर। और कोई प्रेमी दिल ये भी कह रहा

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी मॉडर्न गर्ल फिल्म से 1961 रिलीज फिल्म 1961 रिलीज ये फिल्म साथियों रवि का संगीत और गुलशन पावरा की लिखी रचना।

लता मंगेशकर किशोर कुमार की स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी साथियों, आपकी कसम फिल्म से 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। आजी बर्मन का संगीत था और आनंद बख्शी की लिखी रचना। और अब अपनी पसंद की बात को दोबारा सुनने की चाहत रखने वाले क्या कह रहे हैं, सुनिए इस गीत में।

सलील चौधरी का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी साथियों द्विजन मुखर्जी और लता मंगेशकर की आवाजों का सुंदर समन्वय था। फिल्म का नाम माया जो रिलीज हुई थी वर्ष 1961 में। मित्रों सच्ची युगलता जीवन भर साथ रहने की चाहत और उस चाहत को एक दूजे के प्रति प्रेम आदर समर्पण की भावना, मन और मस्तिष्क का मिलन बेहद जरूरी, यही तो है सच्चा प्रेम।

जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों का सुंदर जादू इस गीत में अभी आपने सुना। प्रेम गीत ये था फिल्म का नाम जिसका ये गीत था। 1981 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जगजीत सिंह का संगीत था, इंदिवर की लिखी रचना।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज से इस समय श्रोता साथी सुन रही हैं कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। रात्रि के 3:33 और 38 सेकेंड हमराही कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

मोहम्मद रफी आशा भोसले के स्वरों से सजी ये रचना आपने सुनी सच्चाई फिल्म से। 1969 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना थी। और अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, ये भाव जज्बात सब एक दूजे के लिए, लेकिन ये जज्बात ये बात सिर्फ इन्हीं के लिए।

कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया गीत अभी आप सुन रहे हैं। गुलशन बाबरा की लिखी रचना है, मुकेश और हेमलता की आवाजों का सुंदर समन्वय। 1969 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है विश्वास। नींद से क्या शिकवा, नींद से क्या शिकवा जो रात भर नहीं आती। कसूर तो उस चेहरे का है जो सोने नहीं देता।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजी यह रचना थी। साथियों, हम जोली फिल्म से ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1970 में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी की लिखी रचना। और अब हम राही बनकर आ गए हैं एक मतवाली आंखों वाले, क्या कहा जा रहा है सुनते हैं।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजी ये रचना आपने सुनी छोटे नवाब फिल्म से। 1961 रिलीज ये फिल्म आर डी बर्मन का, संगीत शैलेंद्र की लिखी रचना। साथियों ये थी आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए कार्यक्रम से। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडापलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। केंद्रीय पोत पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहा मार्शल द्वीप ध्वजांकित टैंकर MT वाल्थेरा हॉर्मूज जलडमरू मध्य में एक अज्ञात प्रक्षेप से टकरा गया, जिसके बाद जहाज पर आग लग गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि सभी 11 भारतीय चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि 11 भारतीय नाविकों को ले जा रहे टैंकर MT पेट्रो डॉल्फिन पर सोहर एंकरेज में ड्रोन हमला किया गया। उन्होंने कहा कि चालक दल के 9 भारतीय सदस्यों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया है, जबकि 2 भारतीय नागरिक लापता हैं। तलाशी और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि रूस और यूक्रेन 4.5 साल से चल रहे युद्ध में एनर्जी सीज़फ़ायर यानी ऊर्जा आपूर्ति से जुड़े हमलों को रोकने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में बस इतना बताया गया कि यह युद्ध विराम तुरंत लागू हो गया है और इससे न तोड़ने की चेतावनी दी गई है। रूस ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है और अमरीका के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी ट्रंप के पोस्ट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया। 224 रन का लक्ष्य लिए पिच पर उतरी वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की ओर से शिमरॉन हेटमायर ने सर्वाधिक 43 रन बनाए, जबकि कामिल पूरन ने 42 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में शानदार 69 रन बनाए। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। सीरीज का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying the foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees over Tamil Nadu at an event held at IIT Madras yesterday. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai. Addressing the students, the Prime Minister highlighted India's manufacturing growth and said that the sector's expansion had created direct and indirect employment opportunities for young people.
1: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं, हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी
3: नया रिकॉर्ड

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 4:11 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

सुमन कल्याणपुर की आवाज से सजी ये रचना सखी रॉबिन फिल्म से अभी आपने सुनी। 1962 में ये फिल्म रिलीज हुई थी मित्रों। रॉबिन बनर्जी का संगीत था, योगेश की लिखी रचना थी। साथियों, सुबह का सफर दिल में भी आशाओं की लालिमा लिए होता है, कई सपने, कई अरमान, कई चाहते।

किशोर कुमार की आवाज से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था, जावेद अख्तर की लिखी रचना। फिल्म का नाम मशाल, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1984 में। मित्रों, प्रकृति हमें बहुत सारे संदेश देती है। ये नदियाँ, ये समंदर, पहाड़, झरने, हरियाली, बाग बहार, पत्ते, सभी कुछ कुछ न कुछ सकारात्मक संदेश लिए हैं हम सभी के लिए। संदेश जीवन को जीवंत रखने का, संदेश जीवन को अच्छे से जीने का और दूसरों को भी अच्छे से जीने का सुंदर संदेश।

आशा भोसले की स्वर से सजी रचना लाजवंती फिल्म से अभी आपने सुनी। 1958 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, सचिन देव बर्मन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी। मित्रों, हर दिल में हर समय कुछ आस पनपती रहती है, उन्हें पूरा करने की चाहत के पीछे हम अपना कर्म करते रहते हैं।

सुबीर सेन की आवाज से सजी ये रचना आपने सुनी साथियों, आस का पंछी, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1961 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। मेरी ख्वाहिश आज मुझसे पूछती है, मेरी ख्वाहिश आज मुझसे पूछती है, तेरी ख्वाहिश क्या है? और पूछता हूं मैं कि ये मौसम का असर है या खुशी के आने की दस्तक है।

देख कबीरा रोया, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना। 1957 रिलीज ये फिल्म, मन्ना जी की आवाज, मदन मोहन का संगीत और राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना।

साथियों, जीवन की एक नव भोर का आगमन तब भी होता है जब परिवार में नव शिशु का आगमन होने वाला होता है। उसके आने की दस्तक से सारा घर, सब रिश्ते खुशी के माहौल से सज जाते हैं। ऐसी ही सुंदर खुशी को दर्शाता ये नगमा सुनते हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज से सजी रचना जिंदगी फिल्म से अभी आपने सुनी। 1964 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। मित्रों, बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं। जैसे हम उन्हें बनाना देखना चाहते हैं, हम उन्हें बना सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी शक्ति से हमें नवाजा है उस ऊपर वाले ने।
1: आओ बच्चों, मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ, सुनोगे ना? मेरे साथ सब मिलकर चुटकी बजाओ और

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों से सजी ये रचना आपने सुनी शोला और शबनम फिल्म से। 1962 रिलीज ये फिल्म रही थी। खयाम का संगीत, कैफी आजमी की लिखी रचना।

0: साथियों, अरुणिमा में सजते हैं जीवन के सातों रंग। इन सभी रंगों से सजकर जब अरुणिमा अपना रंग बिखेरती है तो ऐसा लगता है मानो सात रंग के सुंदर सपने, ऐसे सपने जो हम सच कर सकें, ऐसे अनमोल सपने सच गए हों।
1: मैंने

मुकेश की आवाज में ये सुंदर रचना आपने सुनी आनंद फिल्म से। 1971 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। सलिल चौधरी का संगीत था और गुलजार की लिखी रचना। साथियों, ये सपने, सुंदर सपने जब सच होते हैं तो हम याद करते हैं कि कैसे पल भर की पहचान दिलों के, परिवारों के रिश्ते भी जोड़ देती है, प्रेम का बीज बो देती है। यही पहचान जो आगे जाकर बनता है एक परिवार।

तलत महमूद और लता मंगेशकर के स्वरों से सजी रचना छोटे बाबू फिल्म से ली थी। 1957 रिलीज फिल्म, मदन मोहन का संगीत, इंदिवर की लिखी रचना। और अब आपको सुनवाते हैं नीले पर्वतों की धारा से।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों से सजी ये रचना आपने सुनी आदमी और इंसान फिल्म से। 1970 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। रवि का संगीत था और साहर लुधियानवी की लिखी रचना थी। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रही है ये रचना।

कवि प्रदीप की गाई ये रचना आप सुन रहे हैं। कवि प्रदीप ने ही ये रचना लिखी थी। हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम जागृति, 1954 रिलीज फिल्म। ये थी आज के अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। अब अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से दैनिक यात्रा आसान होगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दुर्गा ई ऑटो योजना शुरू करने जा रही है। दुर्गा यानी ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर विमेन एंड ट्रांसजेंडर। योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। योजना के पहले चरण में कुल 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए जबकि 130 ट्रांसजेंडर समुदाय के लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा। सऊदी अरब में रियाद स्थित किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूतियों के हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई। हमले में मरने वालों की संख्या अब 13 हो गई है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि वो उन्हें हर जरूरी मदद देने के लिए उनके संपर्क में है। दूतावास ने बताया कि शनिवार को हुए हमले में घायल हुए लगभग 300 लोगों में 10 भारतीय भी शामिल थे। भारतीय अधिकारी घायलों की हालत के बारे में जानकारी लेने के लिए स्थानीय अधिकारियों और अस्पताल प्रशासन के संपर्क में है। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि रूस और यूक्रेन 4.5 साल से चल रहे युद्ध में एनर्जी सीज फायर पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्होंने इसकी शर्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये युद्ध विराम तुरंत लागू हो गया है और इसे न तोड़ने की चेतावनी दी गई है। रूस ने इस पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है और अमरीका के राष्ट्रपति कार्यालय ने भी ट्रंप के पोस्ट के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 14 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली है। 224 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिए। श्रृंखला का चौथा मैच 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of developmental projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras yesterday. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research. Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Punnamalli Vadaparini stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. Mr. Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudia Hindu Vidyalaya in Chennai. Addressing the students, the Prime Minister highlighted India's manufacturing growth and said that the sector's expansion had created direct and indirect employment opportunities for young people.
1: आज कंपोनेंट से टेक्नोलॉजी और फिनिश प्रोडक्ट का हर राज्य में केंद्र सरकार प्रोडक्ट चेन को मजबूत कर रही है और इन्हीं कोशिशों का परिणाम है आज हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है 2014 से अब तक हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट 11 टाइम्स बढ़े हैं हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट 50 टाइम्स बढ़े हैं और हमारे इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है.
2: The Supreme Court directed authorities to ensure that people gathering peacefully are not illegally detained and that the free movement of people is allowed subject to traffic regulations. It also called for a review of barricading arrangements in Delhi and directed the centre to ensure that metro services operate according to their normal schedule and that internet services remain uninterrupted subject to law and order requirements. It further directed that lawyers must not be obstructed from discharging their professional duties. Issuing notice to the centre on a plea seeking initiation of contempt proceedings against authorities over alleged violations of its directions, the Supreme Court said it would hear all parties and ensure that no inconvenience was caused. An Indian national injured in the attack on Riyadh King Khalid

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है प्रातः के 5:11 और 8 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

चित्रगुप्त की आवाज से सजी ये भक्ति रचना आपने सुनी नवदुर्गा फिल्म से। 1953 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, एस एन त्रिपाठी का संगीत था और रमेश चंद्र पांडे की लिखी रचना। मित्रों, विवेकानंद जी का कथन है, हम जितना भी बाहर जाएं दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। मित्रों, इसी कथन को जीवन मान हमें आगे बढ़ना चाहिए।

मुकेश की आवाज से सजी ये सकारात्मक रचना आपने सुनी अनाड़ी फिल्म से। 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। साथियों, शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। साथियों, भोर काल की पावन शुभ ऊर्जावान वेला, बहुत सारी सोच कार्य और सपनों को पूरा करने की चाह लिए भोर सुहानी आती है। आइए हम भी इस पावन भोर को और भी ऊर्जावान, आशावादी और विश्वासमय बनाएं। आशा उम्मीद से सजे गीतों को सुनकर।

आशा भोसले किशोर कुमार के स्वर उसी सजी ये रचना सपन जगमोहन का संगीता नक्श लायलपुरी ने ये गीत लिखा था। 1977 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम अभी तो जी लें। मित्रों, जब धरती किसान की मेहनत से अन्न से परिपूर्ण होती है तो किसान के साथ साथ धरती भी खुश होती है। इसी तरह से जब हम अपने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए छोटे छोटे उपायों को करेंगे धरती को बचाने वास्ते, उसे साफ रखने वास्ते, तो भी धरती खुशी से झूम उठेगी और धरतीवासी भी उस खुशी को महसूस करके जरूर खुशी का अनुभव करेंगे।

लता मंगेशकर की आवाज से सजी ये रचना आप सुन रहे हैं आईना फिल्म से। 1974 रिलीज ये फिल्म नौशाद का संगीत जानिसार अख्तर की लिखी रचना। साथियों, समय कब पंख लगाकर भोर से दोपहर, दोपहर से शाम और फिर रात्रि का सफर और फिर एक नव अरुणिमा का उदय लेकर आता है। पता ही नहीं चलता कि भोर सुहानी कब हो जाती है, समय कैसे पंख लगाकर गुजर जाता है पता ही नहीं चलता।

गीता दत्त और साथियों की स्वर से सजी रचना बाजी फिल्म से आप सुन रहे हैं 1951 रिलीज फिल्म सचिन देव बर्मन का संगीत और साहिर लुधियानवी की लिखी रचना।